सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

क्या प्यार ये मेरा कमजोर था यारा, क्या प्यार ये मेरा कमजोर था यारा, जो कि ये दिल के हजारों टुकड़े और छोड़ा मुझे बेसहारा।

0: तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: मैं की करूं।
1: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती। किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं। कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं पटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
0: Big 106.2 The Beat of Bollywood.

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती, किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं, कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग, 7:09।
1: बॉलीवुड।

0: गाइज फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इवन बिफोर वी स्टार्ट द शो, ह्यूज रिस्पेक्ट टू ऑल यू गाइज जो कि शाम के ट्रैफिक में फंसते हैं.
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: पिछले तीन दिन से आई बीन वेंचरिंग आउट. आई डोंट यूजुअली डू दैट, या बिकॉज सुबह सवेरे का शो होता है, जब मेरा स्टार्टिंग टाइम इज 6 o'clock, 7 to 11 मेरा शो है, देन वाई आई डोंट हैव एनी रीजन टू गेट स्टक इन द ट्रैफिक इन द इवनिंग. लेकिन पिछले तीन दिन से I've been ending up doing that, and bhai kya traffic hota hai, and huge kudos and respect to all of you guys jo ki matlab shaam ke traffic mein phaste. Oh my god, it is a new duniya altogether. Matlab meri aankhein khul gayi hain yaar. On that respectful note, it is time to kickstart the show that kickstarts your morning. There is called The Big Breakfast with me, Sid, coming up in just a while. Lara lai mascara lucky ani phai rakhna meri jaan. Main wapas aaunga se mascara. There's a song जो कि बिल्कुल मस्कारा वाला काम करता है रोज सुबह सवेरे. If there's a song that inspires you to have a wonderful day, you start your day on the right note thanks to that song, then request for it. WhatsApp कीजिए 054-309-1062. That's the number, 054-309-1062. There's so much happening here in the UAE. There is a fourth corridor. आप जानते हैं 11-3-11-6-11 के बाद एक fourth corridor अबू धाबी शारजा का बन रहा है. Details about that are coming up. And also there is a bit of a weather update. October में you can expect more than usual rain. Kyun, kab, kaise, all that much more coming up right here on The Big Breakfast with me, Sid. Good morning.

0: 101.2. The beat of Bollywood.
1: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जाद, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।
3: स्कूल्स स्टार्टिंग सून एंड वी नीड अ कार
4: एंड बुक्स, यूनिफॉर्म्स, एवरीथिंग।
3: डोंट वरी, आई फाउंड द बेस्ट बैक टू स्कूल रेंट अ कार ऑफर ऑन selfdrive.ae. सेल्फ ड्राइव कार्स रेंटिंग फ्रॉम जस्ट 1,099 dirhams per month. Rent it for 1 to 12 months and enjoy one flat rate.
5: And what if we need it for a short while?
3: No problem. Zero penalty on early returns. Rent cars with great rates, best flexibility and no early penalties this back to school season. Selfdrive.ae. Get ready. Get driving.
6: High-speed autobahns, majestic Bavarian castles, the ultimate European adventure is calling your name. The big check-in is back. And it's bigger than ever. So pack your bags, because Big 106.2 is taking you to Germany. This isn't just a holiday. It's a golden ticket to the heart of Europe. Ready to board? Just send us a WhatsApp. Big check-in, your name, to 054-309-1062. The Big Check-In to Germany. Presenting sponsor, Daniel Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf TG. Travel partner, AFC Holidays. Only on Big 106.2.
7: Creditmarket.ae. Don't chase banks. Come to me.

0: मनीष सेंट मी अ मैसेज, यू नो, इंस्पायर्ड बाय व्हाट आई सेड लास्ट टाइम. मैंने लास्ट टाइम कंग्रेचुलेट किया आप सबको जो कि शाम के ट्रैफिक में फंसते हैं. मनीष सेड बेटर टू गेट स्टक इन द इवनिंग देन द मॉर्निंग.
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: ऑलराइट, कम ऑन देन, दिस इज इंस्पायरिंग इनफ फॉर एन अर्ली मॉर्निंग क्वेश्चन. लेट्स सी कि कौन मूड में, गिव मी अ कॉल 800-1062 पर. इफ यू हैव द ऑप्शन ऑफ गेटिंग स्टक, भाई दिन में एक बार आपको फंसना है, फंसना तो है ही, अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि आप सुबह फंसो ऑफिस जाते हुए या फिर शाम को ऑफिस से वापस लौटते हुए घर जाते हुए, विच वन वुड यू चूज, विच ट्रैफिक वुड यू प्रिफर टू बी स्टक इन हियर इन द यूएई? इज इट आउटबाउंड और इनकमिंग ट्रैफिक, सुबह का ट्रैफिक या फिर शाम का ट्रैफिक? व्हाट वुड योर प्रेफरेंस बी? कम ऑन, लेट्स डू अ पोल अर्ली इन द मॉर्निंग. आई नो इट्स अ बिट टू अर्ली, बट गिव मी अ कॉल इफ यू आर इन द मूड. 800-1062 पर, विच ट्रैफिक वुड यू प्रिफर टू बी स्टक इन, मॉर्निंग या फिर इवनिंग? Marshmallow with Diva coming up in just a while. This is the big breakfast with me, Sid.
2: तुम बीमार हो?
3: No.
2: तो लेती क्यों?
3: मेरी बॉडी में सेंसेशंस होते हैं, पर उनको कंट्रोल करते हैं.
2: कैसे?

0: 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: और 8:26 ऑन द क्लॉक एंड द एनसीएम हैज सेड कि अक्टूबर में हमेशा से ज्यादा बारिश होगी, अबव एवरेज रेनफॉल, बिकॉज एल नीनो इज गेटिंग अ बिट पावरफुल, बट डजंट मीन दैट यू शुड एक्सपेक्ट फ्लडिंग। राइट नाउ वेदर वाइज इट इज 32 डिग्री सेल्सियस, पार्टली सनी स्टार्ट टू दिस थर्सडे मॉर्निंग, विंड्स ब्लोइंग एट 10 किलोमीटर्स पर आवर, ह्यूमिडिटी एट 75%, हाइज ऑफ 36, लोज ऑफ 32 डिग्रीज।
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: It's .730 on the clock and it is Arbaaz Bhai's reporting time. लेकिन Arbaaz Bhai मेरे साथ रेडियो पे बात कर रहे हैं. ये Arbaaz Bhai क्या कर रहे हो यार? डांट पड़ेगी तो?
1: कोई डांट नहीं पड़ेगी सर. एवरी डे इट्स अ हैबिट नाउ.
0: इट्स अ हैबिट फॉर यू और योर बॉस कि आप लेट आते हो?
1: ना, फॉर मी इट्स ऑलवेज वंस इन अ मंथ. यू नो आई हैव अ ट्रैक रिकॉर्ड. वी हैव लेट डिडक्शंस फॉर द ऑन द सैलरीज द मोमेंट यू लेट अराइव लेट.
0: Okay.
1: 9 years I have been working in my company. Not even a single month I have received a full salary.
0: अरे क्या बात है! मुझे लगा बोलोगे not even a single time कि मैं default किया, लेकिन आप कह रहे हो एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि मैंने default नहीं किया है.
1: You know, Sid bhai, the best part, I am someone who if I am late for 5 minutes, na, then I'll sleep fully till 9 o'clock. छोड़ो अभी, हो गया तो हो गया. Because taunt तो 10 मिनट पे भी पड़ता है मैनेजर से.
0: तो
1: why can't
0: वो कहते हैं ना, वो कहावत है ना कि भाई एक खून की सजा भी फांसी है और दो खून की भी. तो Arbaaz Bhai आपके जैसा ट्रैक रिकॉर्ड भगवान सबको दे इज व्हाट मेरी उम्मीद है भाई. हम नहीं सुधरेंगे. जो गैंग है उसका लीडर हूँ, आपको पता ही होगा. हम सुधारने वालों में से हैं. Arbaaz Bhai, तो ये बताइए कि जो क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था, Arbaaz इज इनटू बिजनेस डेवलपमेंट सेल्स एंड आप सुबह के ट्रैफिक में फंसना पसंद करोगे कि शाम को? द क्वेश्चन वॉज कि अगर आपको चॉइस दिया जाए कि आप दिन में एक बार तो ट्रैफिक में फंसोगे, बट व्हाट वुड योर चॉइस बी, सुबह का या शाम का और क्यों?
1: Sid bhai, traffic is traffic. It's always very annoying.
0: Correct.
1: But I would prefer shaam ko, because you know early morning. See, we all are working here. Okay. Morning mein jab traffic hota hai na, you have lots of things going in your mind. Apart from okay, whatever I said, but still you have a plan for the day. Oh, I have to do this. I have to do that. So you are always in a hurry to reach your office.
0: Ye meeting hai, wo client se milna hai.
1: Ye meeting hai. Yes. I have to do or clear all this pending, these, that. बट शाम को क्या, यू आर रिलैक्स. एंड ऑफ द डे यू आर अवेयर दैट जाना तो घर ही है, मंजिल तो एक ही है.
0: आपकी शुरुआत वाली बात सुन के मेरे को लगा नहीं था कि ये आंसर आप दोगे, बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग यू टू से कि नहीं सुबह का ट्रैफिक, वो शाम को तो हर एक मिनट इज कटिंग अवे फ्रॉम माई फ्री टाइम, मेरे घर का टाइम.
1: आई ऑलवेज ट्राई टू रिलेट थिंग्स विद माई प्रैक्टिकल लाइफ. सो फॉर मी ट्रैफिक इज लाइक रूठी हुई बीवी. रूठना तो है ही, ट्रैफिक तो मिलना ही है. अब नाउ इट डिपेंड, छोटा ट्रैफिक है या बड़ा ट्रैफिक है.
0: विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द बीवीज आउट देयर, Arbaaz Bhai यार सलाम है आपकी हाजिर जवाबी को भी और आपकी स्पिरिट को भी. एंड जैसे कि मैंने कहा, आपको आपको 4:30 बजे आपका काम खत्म हो जाता है?
1: Yes, 4:30 in the hope
0: कि इनको ट्रैफिक ना मिले, लेकिन फिर भी कम वक्त ट्रैफिक मिलता है Arbaaz Bhai को.
1: It's a good part actually. You know, when there is a traffic, which means there are people on the road and the country is growing. That's the good sign actually. For me as a sales, more number of people means more construction. More constructions means more into sales.
0: Basically equal to bakra. Arbaaz Bhai, मजा आ गया आपसे बात करके. एंड थैंक यू सो मच कॉल करके फॉर मेकिंग माई डे. इट वॉज एन एब्सोल्यूट प्लेजर टॉकिंग टू यू.
1: थैंक यू सर.
0: टेक केयर. दैट इज Arbaaz Bhai सेइंग दैट शाम का ट्रैफिक इज बेटर देन सुबह का ट्रैफिक. शाम के ट्रैफिक में फंसना इत्मीनान से, आराम से, विद नो डेडलाइन आप फंसो. इफ यू गॉट अ कॉन्ट्ररी पॉइंट ऑफ व्यू, एनीबडी सपोर्टिंग सुबह का ट्रैफिक, गिव मी अ कॉल 800-1062. कि अगर आपके पास चॉइस होती कि दिन में एक बार तो ट्रैफिक में फंसना ही है, आप कौन से ट्रैफिक में फंसना प्रेफर करोगे, सुबह का ट्रैफिक या शाम का ट्रैफिक? गिव मी अ कॉल 800-1062 पर.

0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate. TNC apply. Big 106.2.
1: इफ यू हैव द चॉइस, अगर कोई आपको इम्पॉसिबल चॉइस देता कि अगर आपको दिन में एक बार ट्रैफिक में फंसना होता सुबह या शाम, आप किसको चूज करते? लास्ट टाइम अरबाज सेड वेरी कॉन्फिडेंटली कि नहीं यार, शाम का ट्रैफिक इज मच मच बेटर. गेटिंग स्टक देयर मींस कि कोई डेडलाइन वगैरह नहीं है तो आप आराम से इत्मीनान से फंस सकते हो. आई गॉट जुल्फी विद मी ऑन द फोन लाइन. जुल्फी भाई, गुड मॉर्निंग.
2: गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू?
1: वेरी वेरी गुड. जुल्फी भाई, आपके क्या हाल चाल है?
2: अल्लाह करम सर.
1: अच्छा सर, आपको अगर मैं पूछूं, यू हैव अ कॉन्ट्रेरी पॉइंट ऑफ व्यू टू अरबाज, अगर मैं आपसे पूछूं कि सुबह का ट्रैफिक या शाम का ट्रैफिक कब फंसना पसंद करेंगे आप, तो क्या जवाब है आपका?
2: सुबह का ट्रैफिक.
1: सुबह का ट्रैफिक क्यों?
2: शाम में सब फ्रस्ट्रेटेड.
1: एक्चुअली आपकी बात बिल्कुल सही है, सब फ्रस्ट्रेट, सब ऐसा लगता है सब गुस्से में.
2: सब बॉस से लड़के निकले सर, सब गुस्से में.
1: किसी का भी दिन अच्छा नहीं गया ऐसा लगता है ना. एवरीबडी इज लाइक कटिंग कॉर्नर्स, एवरीबडी इज लाइक इन अ हरी. जितने लोग फ्लैश करते हैं, हॉर्न बजाते हैं, वो सुबह थोड़ा कम होता है ऐसा है?
2: सुबह थोड़ा कम होता है. सुबह सिर्फ जो है वो स्कूल जोन के बाहर माहौल बदतमीजी है, बाकी सब तो ठीक है.
1: माहौल बदतमीजी, ओह माय गॉड, दैट इज अ न्यू वन. वाह वाह, माहौल बदतमीजी सिर्फ स्कूल के बाहर होता है. वैसे शाम को सारी यूएई में माहौल बदतमीजी होता है है ना. सुबह सुबह सवेरे थोड़ा तैयार होके अच्छे मूड में, एटलीस्ट जबरदस्ती अपने आप को भी पुट योरसेल्फ इन अ गुड मूड टू फेस दैट ब्रांड न्यू डे एट वर्क.
2: दूसरा एक और फैक्टर भी है सर, सुबह सब घर से नाश्ता करके चले.
1: हाँ,
2: शाम में जो गाड़ी चला रहे हैं वो सब भूखे होने घर जाके खाना.
1: राइट राइट,
2: भूख में गाड़ी गाड़ी टेढ़ी चला रहे.
1: जुल्फी, यू हैव प्रूव कि आप एजुकेशन फील्ड के इतने माहिर क्यों हैं यार. आपने बिल्कुल एक थियोरेटिकल एनालिसिस कर दी कि भरपेट ट्रैफिक में फंसना इज मच बेटर देन खाली पेट. एंड दैट्स व्हाट हैपेंस इन द मॉर्निंग. सो
2: या लॉट ऑफ पीपल आर कैरिंग कॉफी इन द कार.
1: आई गॉट एन आइडिया. आपने अभी तक पीएचडी की है? यू कैन एक्चुअली डू अ डॉक्टरेट ऑन दिस. व्हाट इज बेटर, सुबह का ट्रैफिक इज ग्रेटर देन शाम का ट्रैफिक, हेंस प्रूव्ड. फिर वो डब्बा बना के उसको कलर भी कर देना एंड में. वेरी नाइस जुल्फी, दैट इज अ फैबुलस आंसर. एक्सपेक्ट नो लेस फ्रॉम अ टीचर हियर इन द यूएई. थैंक यू सो मच. एज यूजुअल अ प्लेजर टॉकिंग टू यू. हैव अ वंडरफुल डे. दैट इज जुल्फी. अगर आपके पास भी, इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट ट्रैफिक इज बेटर, मॉर्निंग या इवनिंग, इफ यू हैव द चॉइस ऑफ गेटिंग स्टक इन वन आउट ऑफ द टू ट्रैफिक्स, सुबह के ट्रैफिक में आप फंसना पसंद करोगे या शाम का? गिव मी अ कॉल 800-1062 पर.

0: Ride Autobahns, majestic Bavarian castles. The ultimate European adventure is calling your name. The Big Check-In is back and it's bigger than ever. So pack your bags because Big 106.2 is taking you to Germany. Presenting sponsor Daniel Properties. This isn't just a holiday. It's a golden ticket to the heart of Europe. Ready to board? Just send us a WhatsApp. Big Check-In, your name to 054-309-1062. The Big Check-In to Germany. Only on Big 106.2.
1: Wow, your hair color looks stunning.
2: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
1: Yeah, right.
2: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
1: Really?
2: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
1: I'm buying it right now.
2: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
3: School's starting soon and we need a car.
4: And books, uniforms, everything.
3: Don't worry. I found the best back-to-school rent-a-car offer on selfdrive.ae. Self-drive cars renting from just 1,099 dirhams per month. Rent it for 1 to 12 months and enjoy one flat rate.
5: And what if we need it for a short while?
3: No problem. Zero penalty on early returns. Rent cars with great rates, best flexibility and no early penalties this back-to-school season. Selfdrive.ae. Get ready, get driving.
0: The Big Mix. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae. ट्रैफिक ब्रॉट टू यू बाय selfdrive.ae.
6: सुबह से ख्याली ट्रैफिक के बारे में तो बात कर रहे हैं, देखते हैं कि एक्चुअल ट्रैफिक कहां पर है. द स्टारो शो दिस मॉर्निंग इज E44 ऑल द वे फ्रॉम दुबई सफारी पार्क. ये वर्का वन से पहले से ट्रैफिक शुरू हो जाता है एंड गोज ऑल द वे टिल रसलखोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. सो बी केयरफुल, यहां पर आपको कुछ 8 से 10 मिनट की देर मिनिमम मिलने वाली है. हो सके तो इस रास्ते को अवॉइड करें, इफ पॉसिबल टेक अ डीटूर राइट नाउ. 311 E11 हेडिंग साउथ गोइंग टुवर्ड्स दुबई फ्रॉम शारजा, द टू मेन कॉरिडोर्स. यहां पर आपको यूजुअल ट्रैफिक मिलेगा 8 से 9 मिनट की देर. देन देयर इज अ 24 मिनट स्लो डाउन ऑन E88. आजकल काफी बिजी होने लगा है ऑल द वे फ्रॉम ओएसिस मॉल इन शारजा हेडिंग ईस्ट गोइंग टुवर्ड शारजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट टिल सेफ जोन. आपको मिलेगी ये 24 मिनट की देर. अजमान इंडस्ट्रियल 2 हेडिंग साउथ यू विल फाइंड अ डिले ऑफ 2 टू 3 मिनट्स. देन देयर इज अ 15 मिनट स्लो डाउन 15 मिनट की देर एट D89 एंड दिस इज एयरपोर्ट रोड गोइंग टुवर्ड्स देरा. इन केस यू स्पॉट समथिंग एंड इफ इट्स सेफ गिव मी अ कॉल 800-1062 पर.
0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate. TNC apply. Big 106.2.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है. देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे.
1: बिग टाइम चेक.
2: गुड मॉर्निंग. 8:06.
1: Bollywood.

0: इस पे खर्च करो ऑन मेटावान सब्सक्रिप्शन सर्विस इज नाउ बीइंग ऑफर्ड हियर इन द यूएई. कुछ देर में कमिंग अप मोर डिटेल्स अबाउट दैट फोर्थ कॉरिडोर दैट्स गोइंग टू कम अप कनेक्टिंग द एमिरेट्स हियर इन द यूएई. एंड साथ में आप जानते हैं वी हेडिंग आउट टू जर्मनी ऑल एक्सपेंसेस पे ट्रिप इन द लेटेस्ट सीजन ऑफ द बिग चेक इन. दिस इज बिग 106.2.
1: बिग 106.2.

0: फायर है तू,
1: वाइल्ड फायर है।
2: मेरा नाम है पुष्पा, पुष्पराज अपने दम पे बनाए मैं, नाम काफी है, पहचान की जरूरत नहीं है।

0: 101.2. The Beat of Bollywood. The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: 8:41 on the clock, सुबह से हम लोग ट्रैफिक की बात कर रहे हैं. वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक केम अप एंड दैट वाज दैट सुबह का ट्रैफिक आप प्रेफर करते हो या शाम का. लेकिन अब हो सकता है कि ट्रैफिक आई मीन वी आर एबल टू बिल्ड आर वे आउट ऑफ ट्रैफिक. हाउ? बिकॉज देयर हैज बीन अ ह्यूज न्यू 80 किलोमीटर्स का फोर्थ कॉरिडोर दैट हैज बीन अप्रूव्ड हियर इन द यूएई. इट्स द बिगेस्ट स्टोरी दिस मॉर्निंग. एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट 3.5 बिलियन विद अ बी. दिरहम्स का फर्स्ट फेज इवेंचुअली कनेक्ट करेगा शारजा साइड थ्रू दुबई टुवर्ड्स अबू धाबी. इसमें गेस कितने लेन्स होने वाले? 12 लेन्स का ये मैसिव कॉरिडोर होगा. 72 ब्रिजेस, 17 टनल्स एज वेल. एंड द आरटीए सेज दैट कुड कट जर्नी टाइम्स बाय, दिस इज द बिग थिंग राइट, 60% से जर्नी टाइम्स कट होंगी. एंड कुड सर्व मोर देन 3.1 मिलियन पीपल. सो हाउ मच आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फोर्थ कॉरिडोर? ऑफकोर्स वी गॉट 311, 611. We did a bit of a question also about this some time ago. अगर आपको याद हो, एक आध महीने पहले जब ये अनाउंस हुआ था कि 11, 311, 611, now should it be 911 or something else? And then we found that there is actually already a 911 that exists somewhere in the UAE. इसका नंबर क्या होगा पता नहीं है, लेकिन चुनरी चुनरी कमिंग अप द लेट्स गो वर्जन फ्रॉम है जवानी तो इश्क होना है. बाय द वे, लेट्स गो से याद आया, द बिग चेक इन इज ऑन. बिग चेक इन का कॉन्टेस्ट हम लोग खेलने वाले हैं जस्ट अ फ्यू मिनट्स फ्रॉम नाउ. इट इज गोइंग टू बी द जर्मन नॉलेज कॉन्टेस्ट. अगर आपको जर्मनी जाने में इंटरेस्ट है, और किसको नहीं, इट्स ऑन एवरीबडीज बकेट लिस्ट राइट. फ्री ऑल एक्सपेंसिस पेड ट्रिप है टू जर्मनी विद टीम बिग. इफ यू वॉन्ट गेट वन स्टेप क्लोजर, बिग चेक इन स्पेस योर नेम, व्हाट्सएप इट टू 054-309-1062.
2: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापचिक एसी कहाँ मिलेगा बताना?
3: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना?
2: अलरास बोले तो
3: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर. शारजा, सज्जादेरा, रसल खोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं.
2: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी. विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर.
4: School's starting soon and we need a car.
5: And books, uniforms, everything.
4: Don't worry. I found the best back to school rent a car offer on selfdrive.ae. Self-drive cars renting from just 1099 dirhams per month. Rent it for 1 to 12 months and enjoy one flat rate.
6: And what if we need it for a short while?
4: No problem. Zero penalty on early returns. Rent cars with great rates, best flexibility and no early penalties this back to school season. Selfdrive.ae. Get ready, get driving.
0: The Big Mix. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae. Traffic brought to you by selfdrive.ae.
1: It's 8:44 on the clock and let's take a look sabse pehle at 44. Things are looking much, much better. Subah ki shuruaat kafi traffic ke saath hui thi heading west, but now things are smoother. There is still congestion all the way from Varka 1 till Russell Khor. You'll find slow moving traffic also aaj 66 mein going towards Nadal Sheba heading north, going towards E11 at Al Jadaf as well. Then there is 44 pe wapas agar aaye to Alkuz ke aas pas roz ke din traffic hai. JVC pe going away and towards 311 at that junction, you'll find slow moving traffic at E11 Sheikh Zayed Road as you go south from Trade Center roundabout. And then there is E88 ka 12 minute ka delay expect kar sakte hain aap, and this is heading east going towards safe zone. E11 is also busier than usual, 17 minutes ka delay heading south going towards Dera from Al Nada Interchange 1, and 13 minutes ka delay at D89, and this is the airport road going west towards Dera.
0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate. TNC apply. Big 106.2.

0: गुंडा, कातिल, जेल से भागा हुआ मुजरिम। शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं।
1: बिग 106.2

0: 8:51 on the clock and what's happening in the world of sports? Sport bolo to hamare to cricket hi hai yaar.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The beat of Bollywood.
0: ऐसा कहना बिल्कुल ही गलत है. वी डूइंग रियली वेल इन द वर्ल्ड ऑफ बैडमिंटन इन हॉकी एटसेट्रा. लेकिन क्रिकेट में क्या हो रहा है? आज शाम को द थर्ड एंड फाइनल T20 इन दैट थ्री मैच सीरीज इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान. इंडिया इज ऑलरेडी वन द सीरीज 2-0 अभी लीड कर रही है. एंड आज शाम को देखिए 6:30 लोकल टाइम यू कैन एक्सपेक्ट द मैच टू स्टार्ट. इंडिया वर्सेज अफगानिस्तान ऑलवेज अ गुड कॉन्टेस्ट बाय द वे एंड ऑलवेज अ नाइस टेस्ट especially for the reserve players as well. Big talking point ke Vaibhav Suryavanshi ko abhi tak to mauka nahi mila. Third T20 mein kya unko mauka milega? Jasprit Bumrah, is he going to play or not? He did play in the first two games, made kind of a limited impact, but kya hai na ki ek end se agar aap tight bowling karte bhi ho so that is impact enough in a T20. If you like being completely miserly with the amount of runs that you give, that is a huge impact in itself. तो क्या हुआ अगर उतने विकेट नहीं ले जितने की लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे. The other thing that's happened in the world of cricket is that BCCI की IPL governing council की meeting हुई and they have decided to keep the IPL auction this time in India, which is actually quite a change. क्योंकि पिछले कुछ सीजन से ये बाहर गाँव into air quotes हो रहे थे. ये auctions were happening कभी यहाँ दुबई में कभी सऊदीया में, but this time they have decided to keep it in India. इसके reasons क्या हैं अभी तक पता नहीं है, but one other thing that people were expecting out of this governing council की meeting was the decision around the impact player. कि बहुत सारे specially voices like सचिन तेंदुलकर etc. have said that there should be no impact player. Now इसका impact इस इंपैक्ट प्लेयर के रूल में कितना होगा, ओनली टाइम विल टेल. अभी तक इस बात पे कोई क्लैरिटी नहीं है वेदर दे हैव एक्चुअली रीच्ड अ डिसीजन अबाउट द इंपैक्ट प्लेयर और नॉट. बट हाँ, भुवनेश्वर कुमार ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा कि यार ये जो ऑक्शन होता है ना ये नहीं होना चाहिए यार. फाइंड अ बेटर वे टू एक्चुअली डू द प्लेयर्स की अदला बदली from one team to the other. But auction jo hota hai, so much of paisa, it feels like you're in a bakra bazaar. And he didn't use this is my terminology, lekin kitne paise milenge nahi milenge, iska jo pressure hota hai, it is unwanted pressure according to Bhuvneshwar Kumar. Dekhte hain aage kya hota hai. But kya ho raha hai yahan par Big 106.2 par, aap jante hain. Big check into Germany.
1: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
0: सिर्फ एक छोटा सा काम आपको करना है, दिन भर करते रहना है. यू गॉट टाइप आउट बिग चेक इन स्पेस योर नेम. बिग चेक इन टाइप करके स्पेस देकर अपना नाम टाइप करो और उसे व्हाट्सएप करो 0543091062. दिस इज द नंबर जो अब तक आपको याद हो ही गया होगा. 0543091062 पर व्हाट्सएप करो बिग चेक इन स्पेस योर नेम एंड देन वील प्ले द जर्मन नॉलेज कॉन्टेस्ट. चांस फॉर यू टू गेट वन स्टेप क्लोजर टू विनिंग अ ट्रिप टू जर्मनी विद टीम बिग.
1: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते. जहाँ खड़े हो जाते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है.
1: नाम है सिद. सिद on the Big Breakfast. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. High-speed autobahns, majestic Bavarian castles, the ultimate European adventure is calling your name. The Big Check-In is back and it's bigger than ever. So pack your bags because Big 106.2 is taking you to Germany. This isn't just a holiday, it's a golden ticket to the heart of Europe. Ready to board? Just send us a WhatsApp. Big check-in, your name to 0543091062. The Big Check-In to Germany. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Only on Big 106.2.
3: CreditMarket.ae. Don't chase banks. Come to me. Credit cards, loans and mortgages at creditmarket.ae. Call 800 Alfred. Alfred simplifies money.
1: The Big Breakfast, brought to you by Papa John's New Pan Pizza. Enjoy 360 degrees cheese, loaded toppings and a crispy parmesan crust. Order now. Big 106.2. That's my song.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग, 9:09।
1: बॉलीवुड।

0: Test and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
1: It's time today, German Knowledge Contest. I've got Rimza with me on the phone line. What a nice name, Rimza. Good morning.
2: Good morning.
1: How are you doing? All good?
2: All well. How are you?
1: Very good. In the world of banking, everything is bankable. Kya chal raha hai?
2: Bahut kuch chal raha hai. Bahut AI chal raha hai. Bahut technology chal rahi hai.
1: Naukri kitne khatre mein hai, Rimza?
2: नहीं है अभी तक
1: है ना. मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब वो मैं देखता हूँ कि कोई रोबोट है, वो थोड़ा सा पागल हो गया, सड़कों पे दौड़. डिड यू हियर दैट न्यूज़ अबाउट दिस रोबोट हु इज गॉन कंप्लीटली वाइल्ड? वो सड़क पे दौड़ रहा है और पुलिस उसके पीछे दौड़ रही है उसको पकड़ने के लिए.
2: आई सॉ दैट एंड आई एम लाइक, वो टाइम दूर नहीं है जब हर कोई ऐसे कर रहा होगा.
1: देन देयर इज वन रोबोट हु काइंड ऑफ किक्ड अ 90-year-old ऑल्सो. सो मैं जब देखता हूँ मुझे पहले तो अच्छा नहीं लगता, फिर देन आई फील क्वाइट गुड अबाउट माई सेल्फ. चलो ठीक है, एटलीस्ट अभी के लिए नौकरी खतरे में नहीं है.
2: अभी के लिए नहीं है क्योंकि हमें दिख रहा है कि ये सारा कुछ नहीं कर सकते.
1: या यू नोज व्हाट्स गोना हैपन इन द फ्यूचर. बट या योर नेम इज क्वाइट अमेजिंग यार. इट काइंड ऑफ मेक्स इट साउंड कि अगर किसी के पास कोई सॉफ्ट ड्रिंक का आइडिया है, देन इफ दे आर लुकिंग टू काइंड ऑफ नेम इट. गर्मी में प्यास बुझा दे, रिमजा. वाह. एनीबडी टोल्ड यू दैट? आई एम द फर्स्ट पर्सन.
2: No one, but you know, मेरा नाम इतना यूनिक है कि आई यूज टू आस्क माई पेरेंट्स कि मतलब ना किसी का, ना स्कूल में किसी का नाम है, ना कॉलेज में किसी का नाम है. इनफैक्ट मेरे अपने बैंक में किसी का नाम नहीं है. सो इफ आई जस्ट टाइप RIM, इट्स ओनली माई नेम दैट्स गोना पॉप अप. सो आई एम लाइक, चलो ठीक है, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं है, मोहम्मद अहमद ऐसा कुछ नहीं है.
1: बट इज इट लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर पेरेंट्स नेम्स और समथिंग लाइक दैट? ऐसा भी नहीं है कुछ भी.
2: आई फील लाइक बिकॉज आई एम अ सेकंड चाइल्ड, दे वर लाइक, लेट्स जस्ट गेट डन विद द नेम.
1: हो सकता है दे वर हैविंग लाइक अ रिमजिम एंड अ लिमका एंड देन लाइक, अरे यार ये अच्छा नाम है, कॉम्बिनेशन, दे आर फेवरेट ड्रिंक्स और समथिंग लाइक दैट. बट आस्क देम, आस्क देम. ओके, मे बी आई हैव क्रैक्ड इट. बट यू नो व्हाट, यू गॉट टू क्रैक वन थिंग इफ यू वांट टू गेट वन स्टेप क्लोजर. नाउ दिस इज लाइक अ हाई स्टेक्स कॉम्पिटिशन, राइट? बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स टू गो टू जर्मनी विद टीम बिग. दिस इज योर मौका. आपका नंबर लग गया तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन. व्हाट आई एम गोना डू इज, जर्मन नॉलेज कॉन्टेस्ट में एक बहुत ही आसान सवाल मैं आपको पूछने वाला हूँ, एंड इफ यू गेट दैट राइट, योर नेम गोज इन टू द ड्रॉ एंड देन यू आर वन स्टेप क्लोजर टू विनिंग दिस ट्रिप टू जर्मनी. डन डील?
2: Oh my God! Yes.
1: 10 seconds होंगे आपके पास, okay? And okay. We've spoken about soft drinks, but this question is going to be about the other kind. So beware. All right, ready? 10 seconds शुरू कर दूँ आपके?
2: Ready.
1: What is a world famous festival held in Germany that celebrates food, music and culture every autumn? Options हैं. Option A, Carnival. Option B, Oktoberfest. Your option C, is it the Summerfest?
2: Oktoberfest.
1: Are you sure? Just because October is around the corner, or do you know this, or what is the scene, or is it just because your name is a combination of some soft drinks? Congratulations, that is the correct answer.
2: Oh my God!
1: बिल्कुल सही. आपका नाम चला गया draw के अंदर. Rimza, you are one step closer to hopefully celebrating Oktoberfest, where it is supposed to be celebrated in Germany. I don't know if you're heading out in October or not, but congratulations. How does it feel, and how badly do you need this vacation? Tell me.
2: I honestly need it so bad, I cannot tell you. मैं पूरे साल try कर रही हूँ मैं कहीं जा सकूँ, UAE से बाहर निकल सकूँ. I really want to travel.
1: और जितनी आपकी बातों से लग रहा है कि आप AI से बहुत ज़्यादा डर रहे हो, I think you're like बहुत बाल नोच रहे हो, and you're very very scared of the future, but you need to kind of let your hair down a bit and head out to Germany. So your name is into the draw, you're one step closer. बस अब एक draw में से आपका नाम निकल जाए ना, तब बात बन जाएगी. So keep your fingers crossed, okay?
2: Thank you so much.
1: And
2: thank
1: ask
2: you.
1: Everybody at your bank, I'm sure it's a huge organization. Sabko bolo ke mera naam draw mein hai. And please keep your fingers crossed. Your fingers. You also keep your fingers. Everybody keep your fingers crossed, okay?
2: Thank you. Thank you so much.
1: Take care. That is Rimza. हमारी आज की विनर है, आज की ड्रॉ एंट्रेंट है. आप भी मैसेज करते रहो, व्हाट्सएप करते रहो, कब क्या पता आपका नंबर कब लग जाए. सो यू गॉट टाइप आउट बिग चेक इन स्पेस देकर अपना नाम एंड व्हाट्सएप इट टू 0543091062.
0: Participate in the Big Check-in contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
3: Big 106.2.

0: 105.2, the beat of Bollywood. This Navratri experience the festive souk exhibition on 26 September from 10 a.m. to 10 p.m. at Almas Conference Center, right next to DMCC Metro Station. Shop from 45 plus exhibitors featuring festive fashion, jewelry, home decor and more. Kids activities, exciting competitions, the UAE's Got Talent Season 8 Grand Finale, plus chances to win staycations and dinner vouchers. Entry and parking free. Brought to you by Kids R Us. With Divalicious Beauty Saloon, jewelry partner Biani Jewels. Event made large by Big 106.2.
1: School's starting soon and we need a car.
2: And books, uniforms, everything.
1: Don't worry, I found the best back-to-school rent-a-car offer on selfdrive.ae. Self-drive cars renting from just 1,099 dirhams per month. Rent it for 1 to 12 months and enjoy one flat rate.
3: And what if we need it for a short while?
1: No problem. Zero penalty on early returns. Rent cars with great rates, best flexibility and no early penalties this back-to-school season. Selfdrive.ae. Get ready, get driving.
4: ए सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापचिक एसी कहाँ मिलेगा बताना।
5: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
4: अलरास बोले तो
5: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर। शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूस, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
4: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
6: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
7: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
8: मॉर्निंग नमस्कार, 20 मिनट ऑन दिस थर्सडे। आज सुबह एनसीएम ने कहा कि अक्टूबर में यू कैन एक्सपेक्ट मोर रेन देन यूजुअल अक्टूबर्स, बट राइट नाउ नो साइन ऑफ रेन। 34 डिग्रीज सेल्सियस, ह्यूमिडिटी एट 64%, विंड्स ब्लोइंग एट 8 किलोमीटर्स पर आवर, हाइज ऑफ 36, लोज ऑफ 31 डिग्रीज।
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by insurancemarket.ae.

0: 1-800 Alfred. Buying insurance is easy. It's when something goes wrong that your choice really matters. That's when insurancemarket.ae delivers.
1: मैं नाचू कब तलक, ये भी कोई सवाल हुआ। नवरात्रि है जब तलक है, लेकिन नवरात्रि से पहले यू गॉट डू सम फेस्टिव शॉपिंग। दिस नवरात्रि एक्सपीरियंस द फेस्टिव सूक एग्जीबिशन। ये 26th ऑफ सितंबर को शुरू हो रहा है, फ्रॉम सुबह के 10 से लेकर रात के 10, अलमास कॉन्फ्रेंस सेंटर राइट आउटसाइड जेएलटी मेट्रो स्टेशन। यू कैन शॉप फ्रॉम 45 से भी ज्यादा एग्जीबिटर्स फीचरिंग फेस्टिव फैशन, साड़ीज, ज्वेलरी, होम डेकोर, फूड एंड सो मच मोर। किड्स एक्टिविटीज भी यहाँ पर हैं, एक्साइटिंग कॉम्पिटिशंस इंक्लूडिंग द यूएईज गॉट टैलेंट सीजन 8 का ग्रैंड फिनाले। Plus, chances to win staycations and dinner vouchers and so much more. सबसे इंपॉर्टेंट, एंट्री एंड पार्किंग दोनों मुफ्त। ब्रॉट यू बाय किड्स आर अस विद डिवेलिशियस ब्यूटी सलून, ज्वेलरी पार्टनर बियानी जूल्स, इवेंट मेड लार्ज बाय बिग 106.2।
2: बिग 106.2। बिग 106.2। द बीट ऑफ बॉलीवुड। अपने बिजनेस ड्रीम को दीजिए एक नई शुरुआत अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन के साथ। अब सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस, 48 आवर्स में एक वीजा पाइए, ताकि जस्ट सिर्फ 4,888 दिरहम से शुरू। 100% डिजिटल प्रोसेस, मतलब ऑफिस विजिट की जरूरत नहीं। एक ही लाइसेंस में 10 बिजनेस एक्टिविटीज, साथ ही फ्लेक्सिबल इंस्टॉलमेंट प्लान्स। आज ही 0680888888 पर कॉल कीजिए या विजिट ancfz.ae।
3: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1,099 dirhams a month, flat rate. TNC apply.
2: The Big Breakfast, brought to you by Papa John's New Pan Pizza. Enjoy 360 degrees cheese, loaded toppings and a crispy parmesan crust. Order now.
4: Hey, jaldi hata, tera khatana. Chal hata. Arey, jaldi hata.
2: Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
1: It is 9:26 on the clock, and the good news is that 44 ka traffic ab kafi sambhal gaya hai. अब स्टिल अ बिट ऑफ कंजेशन सफारी पार्क से होते हुए रसल कोर की तरफ जाता हुआ वेस्ट बाउंड ट्रैफिक आपको मिलने वाला है। 66 पर इज अ बिट ऑफ कंजेशन नादल शिबा से हेडिंग नॉर्थ गोइंग टुवर्ड्स अल जदाफ एंड द क्रीक एरिया, ऑल्सो यू फाइंड सम बिजीनेस। एंड देयर इज अ बिट ऑफ नॉर्थ बाउंड ट्रैफिक आज उल्टी दिशा में, लाइक वी से 44 पर अलकूज एरिया में। एज यू गेट आउट ऑफ अलबर्शा साउथ यू फाइंड सम ऑफ दैट नॉर्थ बाउंड ट्रैफिक। 311 पर आपको ट्रैफिक मिलने वाला है अगेन नॉर्थ बाउंड, एंड ये गोइंग टुवर्ड्स इंटरनेशनल सिटी। From Silicon Oasis, you find that congestion. 611 पे आज unusual traffic आपको मिलने वाला है। Arabian Ranches 3 की तरफ जाता हुआ south. In case you spot something, give me a call 800-1062 पर।
2: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1,099 dirhams a month, flat rate. TNC apply. Big 106.2.

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद्ध, सिद्ध ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Right, any excuse that you can find to drive safely, you should take with both hands. In fact, keep both hands on the steering wheel, especially when you're driving on your way to work and कहीं पर भी सड़क पे आप गाड़ी चला रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो ऑल द ट्रैफिक रूल्स. जितनी बार भी हम ये कहें उतना कम है. एंड ऑफ कोर्स यू नो बैक टू स्कूल जब था देन इट वाज दैट डे ऑफ बैक टू स्कूल. दैट पर्टिकुलर मंडे वाज आल्सो एक्सीडेंट फ्री डे राइट. एंड यू हैड टू रजिस्टर रिमेंबर. एंड चार ब्लैक पॉइंट्स आपके लाइसेंस से हट सकते थे. एंड व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दैट? मोर देन 385,000 पीपल एक्चुअली रजिस्टर्ड. And the RTA is very proud to announce that there were zero fatalities on that particular day. So, in me se kitne sare log aise hain jinke char black point hat gaye, quite a few of them. So, congratulations to all of you who are feeling a bit lighter. This is The Big Breakfast with me, Sid. There's so much coming up on the show, including the Big Bollywood Quiz.
0: Big 106.2.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग 10:08।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

0: We are counting down to winter here in the UAE.
1: The Big Breakfast with Zed on Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: अभी सारे प्लान बनने लगे हैं. 14th of October को Global Village will start. 12th of October को Dubai Safari Park is going to be starting. Miracle Garden also will reopen very very soon. But one new thing, brand new here in the UAE is going to be an 80-kilometer hiking grand loop that is coming up in Jabal Jais. जबल जेस अपनी ट्रेल नेटवर्क को एक्सपैंड कर रहा है. न्यू रूट्स हैं यहाँ पर, इम्प्रूव ट्रेल्स, मल्टी डे हाइकिंग एज वेल. सो द बेस्ट पार्ट इज दैट यू नो नॉट एवरीबडी नीड्स टू डू दिस एंटायर 80 किलोमीटर्स, राइट? सो जितना भी आपके लेवल है, हाइकिंग लेवल है, लाइक इफ यू आर अ बिगिनर लाइक आई एम, देन यू कैन जस्ट डू अ स्मॉल लिटिल पोर्शन ऑफ दिस ग्रैंड लूप. इट्स डिजाइंड एज अ मल्टी डे माउंटेन जर्नी. हाइकिंग, क्लाइंबिंग, कैंपिंग, साइकिलिंग कनेक्शन भी होने वाले हैं. फर्राटेदार वाया फर्राटा स्ट्रेचिंग अप टू 20 किलोमीटर्स, चार सेक्शन विद डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल्स, राइट? सो दे गोना बी फोर सेपरेट sections with four difficulty levels. Mountain shelters bhi banaye ja rahe hain for longer adventures, wayfinding, rehabilitated trails as well, mountain rescue support and across the network as well, because it's not easy designing this na, matlab if you're at that level 4 and at the most difficult and then you kind of go the whole hog, it's quite an adventure literally. So you need all the support that you can. But final date iska abhi tak announced nahi hua hai ki kab ye jo 80 kilometers ka pura grand loop banne wala hai. The final date has not been announced, lekin

0: The Big Breakfast, brought to you by Papa John's New Pan Pizza. Enjoy 360 degrees cheese, loaded toppings and a crispy parmesan crust. Order now.
1: Two best friends, one dangerous mission and chaos they never saw coming.
2: Tum dono hamare liye intel collect karoge aur is mission ka hissa banoge.
1: Get ready for Vibe, starring Kunal Kemmu, Preeti Zinta and Sparsh Srivastava. Directed by Kunal Kemmu. This is
3: the Vibe. Bhagwan, please mujhe bacha le. Bhagwan, please mujhe bacha le. Nastik se aastik ban gaye.
1: Vibe, releasing 18th September. Distributed by Al Nisser Cinema Film. To win invites, keep listening to Big 106.2.
0: Listen to her every day.
4: Mugembo! खुश हुआ।
5: हाय इशिता।
6: हाय मानसी।
5: यार ये डिज्नीलैंड की डीपी है क्या? रुको, हाउ आर यू? बाद में करेंगे। आई यू एट डिज्नीलैंड?
6: पेरिस।
5: पेरिस एक का ट्रिप लेगी, अब जर्मनी का भी लेगी है?
6: हाँ।
5: हाँ, क्या करती हो इशिता घुमाई फिराई के अलावा?
6: आई एम अ होममेकर फुल टाइम।
5: वेरी क्यूट पिक्चर बाय द वे, बहुत क्यूट है।
6: थैंक यू सो मच।
5: अगर आप जर्मनी हमारे साथ ट्रैवल करते हो तो ये दोनों yeah. जो है बालक और बालिका पापा के साथ रहेंगे?
6: दोनों
5: बालिका है। अच्छा, रह लेंगे पापा के साथ?
6: यस यस।
5: वेरी नाइस, बड़ा अच्छा ट्रेन करा है पापा को इशिता ने। लेट्स सी आज शाम इशिता शॉर्टलिस्ट होती है कि नहीं। लेट्स सी कितनी अच्छी इनकी जर्मन नॉलेज है। ऑल द बेस्ट। आपका सवाल है, विच फेमस गेट इन बर्लिन इज वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन लैंडमार्क्स इन जर्मनी? इज इट द गोल्डन गेट और द ब्रांडनबर्ग गेट या फिर इंडिया गेट?
6: द सेकंड ऑप्शन, ब्रांडनबर्ग गेट।
5: तो ये तुक्का लगाया कि पता था?
6: गोल्डन गेट इंडिया में ही है शायद।
5: ये बहुत ज्यादा
6: सेकंड ऑप्शन ही है।
5: विदेश यात्रा कर रही है, कह रही है गोल्डन गेट जो है वो इंडिया में है। आपके घर का गेट तो नहीं है?
6: नहीं।
5: आप हो गई है शॉर्टलिस्ट।
6: Thank you.
5: Congratulations.
6: So much.
5: You're one step away for this check into Germany. Okay.
0: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
7: It's 10:29 on the clock and let's take a look at E11. Abhi bhi yahan par all the way from Altaun wala jo area hai, Alnada interchange 1 heading south, you'll find going towards Dera about a 10 minute delay. Things are looking much better on 311. You just find that slow moving traffic jo ki expect karte hain 6-8 minute ki der heading south going towards Mohesna wala area, industrial area 6 in Sharjah is a bit congested in both directions, east and west. Karta hua traffic S112 par aapko milne wala hai. Then there's still a bit of congestion at E88, jaise E11 E88 banta hai. This is heading east going towards safe zone. Yahan par milegi aapko 4 se 5 minute ki der. And then everything else is looking pretty okay. A bit of congestion at 311 Arabian Ranches ke aas pass bhi. In case you spot something and if it's safe to call me on 800-1062.
0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate. TNC apply. Big 106.2.

0: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Yeah, जितना भी ऊंचा लंबा कद आपका क्यों ना हो, छोटे छोटे से वायरस से आप काफी काफी बीमार हो सकते हैं, right? And that's what the health authorities here in the UAE are recommending. They are saying to all of us, please go and get your flu vaccines, because आप जानते हैं winter is just around the corner, and जब winter का season आता है, अकेले नहीं आता, फ्लू का सीजन भी तो साथ लेकर आता है, एंड दैट इज व्हाई लॉट्स ऑफ पीपल गेट काफी बीमार. सो ताकि वी आर ऑल यू नो इन बेटर पोजीशन टू एंजॉय द विंटर्स मच मोर, यानी कि बीमारी में सारा विंटर निकल जाए. अगर आप चाहते हैं ऐसा ना हो, हेड आउट टू योर नियरेस्ट मेडिकल सेंटर एंड गेट फ्लू वैक्सीनेटेड, बिकॉज यू नो देयर इज अ बिग मिसकंसेप्शन. लगता हमें ऐसा है कि आज हमने वैक्सीन ली और कल हमारी इम्यूनिटी बिल्ड हो गई. नहीं, इट टेक्स एक्चुअली, आई डोंट नो दिस, अ टू फुल वीक्स, दो हफ्ते लगते हैं फॉर द बॉडी टू बिल्ड दैट रेजिस्टेंस अगेंस्ट you know the flu virus. So you got to plan it, schedule it in such a way that you're able to best enjoy the winters. Yeah, so 6 months and onward, 6 months plus jo babies hain, they can get flu vaccinated, and particularly recommended for 65 plus. Jo senior citizens hain, unhe to definitely jaakar flu vaccine lagani hi chahiye. Mirzapur, the movie se, the other super hit Varu forever coming up in just a while. This is The Big Breakfast with me, Sid. Good morning.

0: Bollywood. We have insured Dubai families since 1995. The kids we covered then have kids we cover now. Get health insurance from insurancemarket.ae.
1: Mini chances with big tickets.
2: 20 million dirham grand prize. 5 consolation prizes up to 1 million dirhams.
1: Plus big spin and weekly e-throws.
2: Buy now at bigticket.ae.
3: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
4: Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
5: It is 10:43 on the clock, and let's take a look at the usual. हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द फोर्थ कॉरिडोर, लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड कॉरिडोर के क्या हाल है। E11 पर अलनादा इंटरचेंज 1, 6 to 8 minutes का डिले, एंड ऐसा ही कुछ हाल है 311 पर, एंड दिस इज हेडिंग साउथ गोइंग टुवर्ड्स दुबई फ्रॉम शारजा इंडस्ट्रियल एरिया 15 के आसपास। देयर इज अ बिट ऑफ कंजेशन एट बेरूत स्ट्रीट इन बोथ डायरेक्शंस राइट आउटसाइड मदीना मॉल, एंड इंडस्ट्रियल एरिया 6 पे देयर इज ट्रैफिक एज यूजुअल S112 पे, एंड दिस इज गोइंग इन बोथ डायरेक्शंस ईस्ट एंड वेस्ट। स्टिल अ बिट ऑफ कंजेशन एट 88, and this is going towards safe zone heading east, and a bit of congestion at E11 as well, and this is at Ajman Industrial 2 heading south.
4: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate. TNC apply. Big 106.2.

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद, सिद ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड। The Big Breakfast with Sid. Weekdays 7 a.m. to 11 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Papa John's. Big 106.2. That's my song.

0: To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जाद, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।
3: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
4: दो या चार?
3: चार। कब तक वापस लौटेगा? यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
4: चार या
3: पाँच? पाँच।
5: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। ओटीटी पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। More requests, more dedications. This is Big Unlimited on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: दुनिया का कोना कोना देखना चाहता हूँ ना। रफ्तार, पागलपन, हर दिन इतना धमाकेदार होना कि मुझे अपनी दिल की धड़कने अपनी कानों तक सुनाई दे। मैं उड़ना चाहता हूँ ना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

Bollywood hits non-stop. Big 106.2. The beat of Bollywood.

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं पटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 1:07
1: 6.2 The Beat of Bollywood.

0: शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता, फिर अपन 1001% हिस्ट्री बनाएंगे।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.
2: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
3: Listen to her every day.
4: Mugembo! खुश हुआ।
5: हाय इशिता।
6: हाय मानसी।
5: यार ये डिज्नीलैंड की डीपी है क्या? रुको, हाउ आर यू? बाद में करेंगे। आई यू एट डिज्नीलैंड?
6: पेरिस।
5: पेरिस एक का ट्रिप लेगी, अब जर्मनी का भी लेगी है।
6: हाँ।
5: हाँ, क्या करती हो इशिता घुमाई फिराई के अलावा?
6: आई एम अ होममेकर फुल टाइम।
5: वेरी क्यूट पिक्चर बाय द वे, बहुत क्यूट है।
6: थैंक यू सो मच।
5: अगर आप जर्मनी हमारे साथ ट्रैवल करते हो तो ये दोनों जो है बालक और बालिका पापा के साथ रह लेंगे?
6: दोनों
5: बालिका है। अच्छा,
6: हाँ।
5: रह लेंगे पापा के साथ?
6: यस यस।
5: वेरी नाइस, बड़ा अच्छा ट्रेन करा है पापा को इशिता ने। लेट्स सी आज शाम इशिता शॉर्टलिस्ट होती है कि नहीं, लेट्स सी कितनी अच्छी इनकी जर्मन नॉलेज है। ऑल द बेस्ट। आपका सवाल है, विच फेमस गेट इन बर्लिन इज वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन लैंडमार्क्स इन जर्मनी? इज इट द गोल्डन गेट और द ब्रांडनबर्ग गेट या फिर इंडिया गेट?
6: सेकेंड ऑप्शन, ब्रांडनबर्ग गेट।
5: तो ये तुक्का लगाया कि पता था?
6: गोल्डन गेट इंडिया में ही है, शायद।
5: ये बहुत ज्यादा
6: सेकेंड ऑप्शन ही है,
5: विदेश यात्रा कर रही है। कह रही गोल्डन गेट जो है वो इंडिया में है, आपके घर का गेट तो नहीं है?
6: नहीं।
5: आप हो गई है शॉर्टलिस्ट। Congratulations! You're one step away for this check-in to Germany.
6: Okay.
1: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Big Traffic. Brought to you by selfdrive.ae.
7: E11 पर स्लो ट्रैफिक अराउंड अलमजार अलनादा टुवर्ड्स शारजा। E311 पर भी आपको कंजेशन मिलेगा अराउंड अलगजेज। E611 इज कंपैरेटिवली स्मूदर। कहीं और फंसे हो ट्रैफिक में, लेट मी नो कॉल करके 800-1062 पर।
1: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate. TNC apply. Big 106.2.
8: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरजू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए।
1: The Big Mix with Avni. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood.

0: Now lease a brand new SUV from Jetwort and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. एंड भाई पैसे की बात होती है ना, तो उसमें कोई झमेला नहीं होना चाहिए. सारी इंफॉर्मेशन, सारी अवेयरनेस अपने पास होनी चाहिए. एंड इफ यू आर प्लानिंग टू सेंड मनी बैक होम, दिस इज योर फैक्ट्स. इंडियन रूपी फिलहाल चल रहा है रुपीज 26.15 पर धर्म पर, एंड पाकिस्तानी रुपी चल रहा है 75.8 रुपीज पर धर्म एक्सचेंज पर. फिलिपीन पैसो चल रहा है 17.04 पर 1 धर्म के एक्सचेंज पर. बेसिकली अगर आपको अभी घर पैसे भेजने हैं तो इट्स अ परफेक्ट टाइम. लेकिन अगर आप मेरे जैसे हो जो पता नहीं था, कुछ नहीं पता था, आज वेट कर लेते यार. कभी कभी वेट कर लेना चाहिए. नहीं पूछा ना मुझसे कौन है माशुका. पैसा पैसा ही है यार. Keep it locked to Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: यार तुमने कोई बताया नहीं कि दुनिया ऐसी भी है।
1: मुझे खुद का पता था यार, मगर हूँ तो हूँ।
2: You are listening to the Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. थर्सडे अगर अभी तक निकल नहीं रहा है आपसे तो मैं एक खुशखबरी दे देती हूँ कि फ्राइडे है कल. इट्स अ मूवी डे एंड द मूवी रिलीजिंग टुमारो इज अ बिग वन. मेघना गुलजार की फिल्म है, नाम है इसका दायरा. लेकिन सिर्फ मेघना गुलजार की फिल्म नहीं है, इसमें करीना कपूर खान एज अ मेन लीड काम कर रही हैं. एंड जस्ट नॉट अबाउट दायरा यार, मैं सिर्फ दायरा के लिए एक्साइटेड क्यों हूँ. इट्स अ क्राइम थ्रिलर मेघना गुलजार ने बनाई है, मैं इसीलिए एक्साइटेड हूँ. बिकॉज अगर हम उनकी फिल्मोग्राफी देखें, द लास्ट शी डायरेक्टेड वॉज सैम बहादुर, 2023 की ये फिल्म थी. व्हाट अ फिल्म. एंड इट्स नॉट लाइक समथिंग कि आपको इसमें बहुत ड्रामा मिलेगा, बट सो मच ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट सैम बहादुर. आई मीन जस्ट हैट्स ऑफ विद दैट. छपाक उन्होंने बनाई थी यार, राजी बनाई थी. एंड देयर इज वन मोर मिस्टीरियस फिल्म नेम्ड एज तलवार, अगर आपने नहीं देखी. एज अ किड आई वॉच दैट एंड आई वॉज इन एब्सोल्यूट शॉक के व्हाट, ये निकला है क्लाइमैक्स, ये था. And that is why Dara is gonna be that for me. Please yaar, meri bars bahut high ho chuki hain, expectations ki isko low nahi honi chahiye yaar. ख्वाहिश है ये यार कि अब कल वाली फिल्म अच्छी निकला है. दायरा इज गोना रिलीज टुमारो इन थिएटर्स. अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.

0: Mahmoud Abbas, the Palestinian Authority president. For a second year running, Mr. Abbas will have to address the UN General Assembly remotely. Russia says it's hit three drone-producing plants in overnight attacks on Kyiv and the surrounding region. It says it also hit two road bridges over the Dniester River. The European Commission says its proposal to make Canada an associate EU member is not aimed against the United States, but for our common strength. Its spokesman was responding to President Trump's description of the plan as a hostile act. The US House of Representatives has passed legislation paving the way for tariffs on buyers of Russian oil and tougher sanctions against the Kremlin. One potential target, India, said it remained committed to ensuring energy security for its people. And the American artist Peter Max has died at the age of 88. His colourful psychedelic pop art was credited with capturing the flower power and psychedelia movement of the 1960s. BBC News.
1: Fan Network News from the BBC. Great coverage, vibrant colour, natural finish, all in just 5 minutes. Henna Speedy Easy Hair Colour, made in Italy. Big 106.2.
2: चुम्बी सॉरी तानिया, हाथ में पॉम पॉम लेके लड़कों के लिए चिल्लाना मेरा स्टाइल नहीं है. वो मेरे लिए चिल्लाए, सीटी बजाए, that's not my thing.
1: She's bubbly, bringing fresh energy and a whole lot of flavor. The Big Mix with Avni on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
3: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. दिस इज अ थर्सडे आफ्टरनून एंड इतना खुराफाती दिमाग है ना यार, हर घंटे हर सेकंड कुछ ना कुछ तो सोचता ही रहता है. अभी खाने में ये खाना है, अभी ये काम रहता है, घर जाके ये करना है, अरे उससे ये बात करनी है, ओह यार ट्रिप भी प्लान करनी है, इतनी देर से कहीं गई नहीं घूमने. लेकिन आप हजारों लाखों चीज़ें सोच लो, लेकिन ट्रिप ट्रिप का यार हम पे छोड़ दो. बिग चेक इन टू जर्मनी की बात कर रही हूँ. इन द सावर यू कैन रजिस्टर योर नेम विद 0543091062 द व्हाट्सएप नंबर. टाइप करना है बिग चेक इन स्पेस योर नेम और भेजना है इस व्हाट्सएप नंबर पर, बिकॉज यू कैन गेट अ चांस टू विन दिस बिग चेक इन टू जर्मनी, जहां पर आप जा सकते हो जर्मनी टू दिस ऑल एक्सपेंस पेड ट्रिप. 0543091062 इज द नंबर.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक 2:07। बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: That sound changes everything. When something goes wrong, insurancemarket.ae is there for your claim. Great car insurance. Great support. Call 800-ALFRED.
1: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. और अगर आप भी मेरे जैसे हर वक्त सोचते रहते हो यार यहाँ चले वहाँ चले कहाँ जाएं किसको पूछें किसके साथ प्लान करें, दिस इज बिग चेक इन टू जर्मनी फॉर यू. जहाँ पर आप जा सकते हो जर्मनी टू दिस ऑल एक्सपेंस पेड ट्रिप. बस आपको टाइप करना है बिग चेक इन स्पेस योर नेम और भेजो इस व्हाट्सएप

0: 309-1062. जोर से ट्रिप तो आ रही है ना। नंबर रिपीट कर देती हूँ 0543091062। मैं करूंगी आपको कॉल, खेलेंगे हम एक जीके का सवाल, विच इज नॉट जनरल नॉलेज, इट्स द जर्मन नॉलेज। इतनी तो पता होनी चाहिए, मतलब पता ही है तो जनरल नॉलेज, लेकिन है जर्मनी के रिलेटेड। 0543091062 इज द व्हाट्सएप नंबर, भेजो यहाँ पर। लेट्स सी रैंडमाइजर आज किसका नाम सिलेक्ट करता है, किसको कॉल जाएगा आज।
1: Participate in the Big Check-in contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.

0: तुम बीमार हो?
1: नो।
0: तो लेती क्यों?
1: मेरी बॉडी में सेंसेशंस होते हैं, पिल्स उनको कंट्रोल करते हैं।
0: कैसे हैं सेंसेशंस?
1: सेंसेशंस जैसे सरसराहट, सनसनाहट, दूध को दहाड़, डगमगाहट, फरफराहट, थरथराहट, टपक पहाड़, धरवराहट, थरथराहट, टपक पहाड़, धरवराहट, टपक पहाड़, झटपटाहट, झटपटाहट, शुभ गाहट, गुलाहट, शुभ गुदाई, शुभ मिलाई।
2: Big 106.2, the beat of Bollywood. Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
3: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
4: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
5: Big weather update brought to you by Alras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
6: Big 106.2 में मैं हूँ अवनी आपके साथ। फिलहाल बाहर का टेम्परेचर 37 डिग्रीज है, लेकिन मेरे ऑफिस का ज्यादा बढ़ चुका है। बॉस का बर्थडे भूल गए हमारे लोग। 37 डिग्रीज आउट देयर विद ह्यूमिड लेवल 55%।
5: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Got a song in your head right now? Just WhatsApp it and we'll play it for you on Big Unlimited. Whether it's your favorite track, a shout out or a message for someone special, send your name, space, your song name and your message to 0543091062. Big Unlimited, your request show from 11 a.m. to 1 p.m. Monday to Friday, only on Big 106.2. The beat of Bollywood.
7: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरज़ू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए।
5: The Big Mix with Avni, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Now lease a brand new SUV from Jetwort and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2. Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड मैंने कॉल किया है आज निहार को. हाय निहार.
3: हाय अवनी.
2: हाउ आर यू?
3: आई एम गुड, हाउ आर यू?
2: मैं ठीक हूँ. आप क्या कर रहे थे?
3: मैं काम कर रही थी.
2: क्या काम करते हो आप?
3: तो आई वर्क विद अ फिनटेक, तो मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, तो घर से काम कर रही थी.
2: नाउ आई नो आपको वेकेशन की जरूरत क्यों है. वर्क फ्रॉम होम मुझे जरा तीन कॉन्स बता दो वर्क फ्रॉम होम के, क्योंकि लोगों को लगता है कि ओ माय गॉड इसका वर्क फ्रॉम होम है, ये तो कहीं से भी कर सकती है.
3: आई थिंक कॉन्स तो बस ये है कि यार यू डोंट गेट द ऑफिस वाला एनवायरनमेंट, यू नो, एंड थोड़े डिस्ट्रैक्शन बहुत होते हैं घर पे, क्योंकि काम करते करते ये भी काम करना होता है घर का, फिर वो भी करना होता है, फिर ये याद आ जाता है, तो डिस्ट्रैक्शन बहुत हो जाती है. और एक तो माहौल हो जाता है कि एनवायरनमेंट जो ऑफिस का एनवायरनमेंट नहीं मिलता है. एंड आई थिंक हाँ मेनली यही है, तीन तो मुश्किल ही है, बाकी तो
2: अब मुझे बताओ वर्क फ्रॉम होम वाले ट्रिप पे जाके क्या माहौल बनाएंगे?
3: अब ट्रिप पे जाएंगे तो यार जितना भड़ास है जो लोगों से नहीं मिल रहे उतनी वहां जाके निकाल लेंगे.
2: ओके, वी गोना प्ले जीके कॉन्टेस्ट विद यू. जर्मन नॉलेज आपकी कितनी स्ट्रांग है हम चेक करते हैं. आई एम गोना आस्क यू अ क्वेश्चन, ठीक है? मैं उसके तीन ऑप्शन दूंगी, आपको सही जवाब बताना है, ठीक है? व्हाट करेंसी इज यूज्ड इन जर्मनी टुडे? ऑप्शंस आर पाउंड, यूरो और डॉलर्स.
3: यूरो.
2: अरे सोच तो लो.
3: यूरो.
2: मतलब वर्क फ्रॉम होम वाले इतने डेडिकेटेड है कि उनको आंसर से दिमाग में चढ़ा होता है, पता ही होता है.
3: इतना तो पता है.
2: Congratulations, that's actually the correct answer.
3: Thank you.
2: अच्छा जर्मनी की तैयारी क्या है फिर आपकी, ये तो बता दो.
3: यार कपड़े तो पूरे तैयार हैं, बस वीजा लगने की देरी है और मैं तो उड़ने के लिए रेडी हूँ. बाहर वाले कपड़े पहने ही नहीं मिलते हैं बिकॉज घर पे रहते हैं.
2: निहार बहुत पैसे बचा चुकी है, शॉपिंग नहीं करती है, बाहर ट्रिप पे नहीं जा रही है, ट्रैवल नहीं लग रहा है, इनका वर्क फ्रॉम होम है. लेकिन और पैसे बच जाएंगे आपके अगर आप बिग चेक इन टू जर्मनी में सिलेक्ट हो जाती है, बिकॉज दिस इज एन ऑल एक्सपेंस पेड ट्रिप. Yes, congratulations, Nihar. आपका नाम रजिस्टर हो चुका है एंड लेट्स सी आप जर्मनी हमारे साथ जाती हैं या नहीं. थैंक यू सो मच.
3: फिंगर्स क्रॉस. थैंक यू.
2: बाय
3: बाय.
2: अगर आपको भी चलना है जर्मनी हमारे साथ, ऑल यू हैव टू डू इज टाइप बिग चेक इन स्पेस योर नेम और भेजो इस व्हाट्सएप नंबर पर 0543091062.
1: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.

0: यार तुमने कभी बताया नहीं कि दुनिया ऐसी भी है।
1: मुझे खुद का पता था यार, मगर हूँ तो हूँ।
2: You are listening to the Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Big 106.2 से मैं हूँ अवनी आपके साथ, और अगर मैं आपको एक गाना सुनाऊँ वीर पहाड़िया का, मतलब गाना उनका नहीं है, मूवी उनकी है, उनमें सिर्फ उन्होंने एक गाना किया था, दैट वेंट सो वायरल, द हुक स्टेप वेंट सो वायरल फॉर ऑल द गुड रीजंस एंड द मीम मटेरियल एज वेल, उसकी वजह से ये फिल्म जो है इतनी चल गई थी। लेकिन फिल्म का नाम आपको पता है? कौन सी फिल्म का ये गाना, जरा मुझे बताओ आप। पहले तो 800-1062 पे कॉल करके, एंड हैविंग सेड दैट, उनकी नई फिल्म का नया गाना रिलीज हो चुका है, अगेन अ बेटर हुक स्टेप, बहुत ही अतरंगी और बहुत ही फैबुलस परफॉर्मेंस, लेकिन ये गाना ना हार्ट ब्रेकिंग है यार।

द फिल्म प्रेम कीटाणु जो रिलीज होने वाली है 2nd of October को, गाने का नाम है इश्क का गुलाम, लेकिन इसमें भी इन्होंने सोलो परफॉर्मेंस दिया है डांस, ये भी वायरल होने के काफी चांसेस हैं। द सॉन्ग इज एक्चुअली नाइस, इश्क का गुलाम फ्रॉम द फिल्म प्रेम कीटाणु रिलीजिंग ऑन 2nd of October। बाय द वे, जो मैंने पहले वाला गाना सुनाया था वो किस मूवी का गाना है क्या आपको पता है? 800-1062 इज द नंबर। अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: बकते।
1: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है, देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
2: बिग टाइम चेक 3:07। बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: सॉन्ग का नाम था पनवाड़ी, लेकिन पनवाड़ी पे हम आफ्टर मील जाएंगे. दैट्स एन आफ्टर मील डिश, पान.
1: द बिग मिक्स विद अवनि ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनि आपके साथ. और ये 3 PM पीक लंच आवर टाइम पे पता आपके पे क्या जचता है? मतलब ये तो ऑफ कोर्स 3 PM इतनी धूप है ये तो जचेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ आपके मुखड़े पे एक और चीज जचती है, दैट वन बाइट यू टेक. ओके, इतने घंटे मेहनत, इतने घंटे काम करने के बाद लंच पर आके जब आप घंटों के बाद भूखे बैठे हो, दैट फर्स्ट बाइट फील्स लाइक
2: भुलाने में शायद मुझे जमाना लगे.
0: बस इतना आराम भी नहीं करना है वरना इवनिंग स्नैक का टाइम आ जाएगा. वी गोना प्ले खाओ पियो ऐश करो विद यू, जहां पर आपको मुझे जवाब देना है दो डिशेस में से कोई एक. इट्स गोना बी अ रैपिड फायर राउंड. कॉल करो मुझे 800-1062 पर, मैं खेलूंगी आपके साथ खाओ पियो ऐश करो गेम, जहां पे मैं दो डिशेस दूंगी आपको, रैपिडली आंसर करना है कि आप दोनों में से कौन सी एक चूज करने वाले हो, और जो भी सबसे जल्दी आंसर करेगा वो जीतेगा आज की ओपन मूवी टिकट्स. 800-1062 इज द नंबर. अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.

0: Autobahns, majestic Bavarian castles, the ultimate European adventure is calling your name. The big check-in is back and it's bigger than ever. So pack your bags because Big 106.2 is taking you to Germany. Presenting sponsor Danube Properties. This isn't just a holiday, it's a golden ticket to the heart of Europe. Ready to board? Just send us a WhatsApp. Big check-in, your name, to 054-309-1062. The big check-in to Germany. Only on Big 106.2.
1: Listen to her every day.
2: Mugembo! खुश हुआ।
3: हाय शीता।
4: हाय मानसी।
3: यार ये डिज्नीलैंड की डीपी है क्या? रुको, हाउ आर यू? बाद में करेंगे। आई यू एट डिज्नीलैंड?
4: पेरिस।
3: पेरिस एक का ट्रिप लेगी, अब जर्मनी का भी लेगी है? हाँ। क्या करती हो शीता घुमाई फिराई के अलावा?
4: आई एम अ होममेकर फुल टाइम।
3: वेरी क्यूट पिक्चर बाय द वे, बहुत क्यूट है।
4: थैंक यू सो मच।
3: अगर आप जर्मनी हमारे साथ ट्रैवल करते हो तो ये दोनों yeah. जो है बालक और बालिका पापा के साथ रहेंगे?
4: दोनों
3: बालिका है। अच्छा, रह लेंगे पापा के साथ?
4: यस यस।
3: वेरी नाइस, बड़ा अच्छा ट्रेन करा है पापा को इशिता ने। लेट्स सी आशाम इशिता शॉर्टलिस्ट होती है कि नहीं, लेट्स सी कितनी अच्छी इनकी जर्मन नॉलेज है। ऑल द बेस्ट। आपका सवाल है, विच फेमस गेट इन बर्लिन इज वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन लैंडमार्क्स इन जर्मनी? इज इट द गोल्डन गेट और द ब्रांडनबर्ग गेट या फिर इंडिया गेट?
4: द सेकंड ऑप्शन, ब्रांडनबर्ग गेट।
3: तो ये तुक्का लगाया कि पता था?
4: गोल्डन गेट इंडिया में ही है शायद।
3: ये बहुत ज्यादा
4: सेकंड ऑप्शन ही है,
3: विदेश यात्रा कर रही है कह रही है गोल्डन गेट जो है वो इंडिया में है। आपके घर का गेट तो नहीं है?
4: नहीं।
3: आप हो गई है शॉर्टलिस्ट। Congratulations! You're one step away for this check-in to Germany.
0: Keep your evenings electric. 5 PM to 9 PM. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood.
5: यार तुमने कोई बताया नहीं कि दुनिया ऐसी भी है?
6: मुझे खुद का पता था यार, मगर हूँ तो हूँ।
0: You are listening to the Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
7: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
8: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: Big weather update brought to you by Alras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
9: It's 37 degrees out there with humid levels 57%. लेकिन फिलहाल मेरे ऑफिस का टेम्परेचर काफी बड़ा हुआ है भाई, बॉस का बर्थडे भूल गए हैं हम। 37 degrees feels actually like 45.
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: a brand new SUV from Jetwort and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2.
2: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
3: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. This is the Big Mix and time हो चुका है हमारा खेलने का. Let's see आज कौन है कॉल पे. हेलो,
4: हाय, गुड आफ्टरनून.
3: गुड आफ्टरनून, कौन बात कर रहे हैं?
4: सुमन.
3: सुमन, आपने खाना खा लिया?
4: अनलकीली खा लिया. I'm ready to eat more.
3: नहीं, एक्चुअली लकीली आपने खा लिया, बिकॉज आज मैं स्वीट डिश की बात करने वाली हूँ. तो मैं आपको दो डिशेस दूंगी, आपको बताना है आप दोनों में से कौन सी चूज करोगे. इट्स अ रैपिड फायर, तो आपको फास्ट फास्ट आंसर करना, ठीक है?
4: ओके, डन.
3: रसगुल्ला या मिल्क पेड़ा?
4: रसगुल्ला.
3: रसगुल्ला या गुलाब जामुन?
4: रसगुल्ला.
3: रसगुल्ला या चमचम?
4: रसगुल्ला.
3: रसगुल्ला या राजभोग?
4: रसगुल्ला.
3: रसगुल्ला या रबड़ी?
4: रबड़ी.
3: रबड़ी या बासुंदी?
4: रबड़ी.
3: रबड़ी या शाही टुकड़ा?
4: रबड़ी.
3: रबड़ी या शाही पाक?
4: रबड़ी.
3: रबड़ी या खीर?
4: खीर.
3: खीर, ओके. खीर या कुल्फी?
4: कुल्फी.
3: कुल्फी या सेवियां?
4: कुल्फी.
3: कुल्फी या मोतीचूर लड्डू?
4: कुल्फी.
3: कुल्फी या बेसन लड्डू?
4: कुल्फी.
3: कुल्फी या काजू कतली?
4: कुल्फी.
3: ओके लास्ट, कुल्फी या जलेबी?
4: कुल्फी.
3: कुल्फी. कुल्फी या जलेबी रबड़ी?
4: कुल्फी.
3: ओ माय गॉड, कुल्फी को बीट नहीं कर पा रहा है, इतनी गर्मी हो रही है क्या बाहर? ओ गॉड, कुल्फी यार, मन तो कर गया यार. चाहे मैं अभी एसी में बैठी हूँ, लेकिन बाहर जितनी गर्मी पड़ रही है, कुल्फी ही सॉल्व कर सकती.
4: या जब आपने कुल्फी बोला ना, आई कुडंट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स. कुल्फी इज कुल्फी ना.
3: अच्छा, लेकिन आपने जो लंच क्या खाया आपने आज?
4: मैं नहीं, क्या खाया मैंने? नॉर्मल राइस.
3: देखा, मैं, मुझे पता था ये गेम खेलने के बाद ना सब भूल जाते हैं हमने खाया क्या था, क्योंकि नेक्स्ट मील की प्लानिंग हो रही होती है. अच्छा, ऑर्डर क्या करने वाले
4: हो
3: कि अब क्या खाया जाए? अब तो कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है.
4: नहीं नहीं, अभी कुछ ही खाएंगे.
3: वन फॉर मी प्लीज एज वेल.
4: Yes,
3: sure. I'll pass on for you. Thank you so much, Suman. Okay, bye. If you want to play Khao Piyo Aish Karo with me, call karo mujhe 800-1062 per. Until then, keep it locked to Big 106.2.

0: Craig. Brought to you by InsuranceMarket.ae.
1: InsuranceMarket.ae.
2: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरज़ू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए.
0: The Big Mix with Avni, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: मस्कारा का शौक यार था कि जब स्कूल जा रहे हैं ना तो अप्लाई करके जाते हैं, क्या पता लग रहा है यार टीचर्स को, लेकिन सब पता लग जाता था।
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
0: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ। एंड स्कूल में था यार कि हल्का सा काजल लगा जाते हैं, यू नो हम फ्लिक्स जो है हमारे हेयर स्टाइल ठीक कर लेते हैं, मैम आएंगे तो हम लटे जो है अपनी पीछे कर लेंगे, मस्कारा कभी कभी लगा के जाते थे, लिप बाम हो गया। लेकिन ये स्कूल की जो यादें हैं ना, ये स्कूल में जाके पसंद आती थी, लेकिन जब स्कूल के लिए उठना पड़ता था, जब जाना पड़ता था, ओ गॉड, that was a hassle honestly. Lekin now you can get school ready with self drive, rent a car starting from 1099 dirham per month, flat rate for the year, zero penalty on early returns, so basically school tak ki ride. फुल फील जाएंगी भाई सेल्फ ड्राइव के साथ। यू कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: गुंडा, कातिल, जेल से भागा हुआ मुजरिम, शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं।
1: बिग 106.2

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक 4:08 बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: बजे सिर्फ बिग 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: सबके गले पकड़े गए हैं बिकॉज ऑफ द वेदर। एटलीस्ट ह्यूमिड लेवल्स जो है 55% पे चल रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर इज 37 degrees। इट एक्चुअली फील्स लाइक 50, एंड इसलिए इस वेदर की वजह से काफी लोग बीमार चल रहे हैं। अपना ध्यान रखो। लेकिन
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2. The beat of Bollywood.
4: Pakode banane to nahi aate mujhe. और मैं ना चाय भी बहुत गंदी बनाती हूँ। कौन सी बड़ी बात है, बाकी सब कुछ आता है मुझे। आपके ब्लैक हेड भी हटा सकती हूँ मैं। हो गया सॉल्व, आप कंटिन्यू करो।
0: द बिग मिक्स विद अवनी ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड लव रंजन सिनेमा से एक और फिल्म निकलने वाली है द इरा ऑफ प्यार का पंचनामा. उसका सीक्वल नहीं है लेकिन जो इस फिल्म का नाम है वो सिमिलर सा है, सेम सा है. पहला प्यार दूसरी बार बहुत ही सिंपल सा नाम है लेकिन अगर पिक्चर में ये दिखा दिया तो इट वुड बी अ टू टॉक के अगर आप पहला बार हुआ है आप अभी भी रिलेशनशिप में हो आप दूसरी बार प्यार कर सकते हो. दैट्स टू मच टू यू नो अज्यूम और थिंक अबाउट. अक्टूबर 23 को ये फिल्म रिलीज हो जाएगी सिनेमाज में. 6 नए एक्टर्स हैं, फिर से एक बार नया लॉन्च हो रहा है डेब्यूटेंट्स का विद लव रंजन फिल्म. कार्तिक आर्यन एंड नुसरत भरूचा एक बार लॉन्च हुए थे. बिग बिग बिग एक्टर्स यार नाउ, लाइक क्रेजी वर्क, क्रेजी आर्ट वर्क. एंड इन 6 में से आपका कौन फेवरेट बनता है, मेरा कौन फेवरेट बनता है, 23rd ऑफ अक्टूबर इट इज एंड अ lot of love films by Love Ranjana. Just not that, there's one more coming up in October only. What is that? Wo bhi pyar par hi hai. Batati hu kaun si. Until then, keep it locked to Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Now lease a brand new SUV from Jetwood and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2.
2: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
3: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. एंड द अदर फिल्म जो मैं बता रही थी कि यार प्यार पर बेस्ड है, ऑफकोर्स एडल्टहुड पर है. डोंट बी शाय नाम है फिल्म का, मैं नहीं बोल रही हूँ. डोंट बी शाय रिलीज हो रही है अमेज़न प्राइम वीडियो पर 25th ऑफ सितंबर को. आलिया भट्ट की प्रोडक्शन है एंड इस गाने में वो खुद भी हैं. खुद का कैमियो खुद की फिल्म में, एक्चुअली अ टॉप नॉच टास्क टू डू. जस्ट मी कि तुम्हें भी लग रहा है यार कि ये गाना ना कहीं से तो सिमिलर है यार. इतना सोचने के बाद भी मेरे दिमाग के घोड़े चलने बंद हो गए हैं. मैं गाना सोच सोच के सुन सुन के थक गई हूँ. लेकिन मुझे एक और ऐसा गाना पता है यार, सुना है, जो सिमिलर साउंड करता है. याद नहीं आ रहा है. अगर आपको याद आता है 800-1062 इज द नंबर, कॉल करो मुझे यहाँ पर. और गाना बनाना ही था यार डोंट बी शाय फिल्म के लिए, तो इसका ही कुछ कर देते. Got a better vibe, no? 800-1062 is the number. बताओ यार, ये रे बावरी सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म डोंट बी शाय किससे मैच करता है? Until then,

0: 참. 예, 라디오. 자네네, 봐봐. 앞대. 바바바바바브라우. 간파트라우. 앞대. 뭘.
1: 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Wow, your hair color looks stunning.
3: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
2: Yeah, right.
3: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
2: Really?
3: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
2: I'm buying it right now.
3: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
4: High-speed autobahns, majestic Bavarian castles, the ultimate European adventure is calling your name. The big check-in is back and it's bigger than ever. So pack your bags because Big 106.2 is taking you to Germany. Germany. Presenting sponsor Danube Properties. Title sponsor Papa John's. Associate sponsors Ford and Sharaf DG. Ethnic partner Bavri and Kora. Travel partner AFC Holidays. Ready to board? Just send us a WhatsApp. Big check-in, your name to 054-309-1062. The big check-in to Germany. Only on Big 106.2.
5: Missed your morning buzz?
6: Ye
5: suno.
7: Arbaaz bhai, mere saath radio pe baat kar rahe hain. Ye Arbaaz bhai, kya kar rahe ho yaar? Daant padegi to?
8: कोई डांटनी पड़ेगी सर, एवरी डे इट्स अ हैबिट नाउ.
7: इट्स अ हैबिट फॉर यू और योर बॉस कि आप लेट आते हो?
8: नाउ फॉर मी इट्स ऑलवेज वंस इन अ मंथ. यू नो आई हैव अ ट्रैक रिकॉर्ड. वी हैव लेट डिडक्शंस फॉर द ऑन द सैलरीज द मोमेंट यू लेट अराइव लेट.
7: Okay.
8: 9 years I have been working in my company. Not even a single month I have received a full salary.
7: अरे क्या बात है! मुझे लगा बोलोगे not even a single time कि मैं default किया है, लेकिन आप कह रहे हो एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि मैंने डिफॉल्ट नहीं किया है.
8: You know, Sid bhai, the best part, I am someone who, if I am late for 5 minutes, na, then I'll sleep fully till 9 o'clock. छोड़ो अभी, हो गया तो हो गया. Because taunt तो 10 मिनट पे भी पड़ता है मैनेजर से.
7: वो तो
8: why can't
7: वो कहते हैं ना, वो कहावत है ना कि भाई एक खून की सजा भी फांसी है और दो खून की भी तो. अरबाज भाई, आपके जैसा ट्रैक रिकॉर्ड भगवान सबको दे इज व्हाट मेरी उम्मीद है भाई. हम नहीं सुधरेंगे, जो गैंग है उसका लीडर हूँ, आपको पता ही होगा. हम सुधारने वालों.
9: एनर्जी एंड एक्शन मंडे टू फ्राइडे 7 AM to 11 AM द बिग ब्रेकफास्ट विद सिड ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड. Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
10: Evening rush has started. अगर आप जा रहे हो शारजा वाली साइड, अच्छा खासा कंजेशन मिलेगा आपको E311 एंड E11 पर. ऑन द पार्ट्स ऑफ शेख जायद रोड एंड अलखेल रोड, E611 इज ऑफ कोर्स अ बेटर अल्टरनेटिव रूट टू गो. अगर कहीं और फंसे हो, लेट मी नो कॉल करके 800-1062 पर.
11: Now lease a brand new SUV from Jetwood and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
12: Big 106.2.
13: Big 106.2. Big 106.2. The beat of Bollywood. Big 106.2.
14: Song of the Hour, brought to you by insurancemarket.com.

0: travels or business, over 30,000 Google reviews, and even a metro station named after us. Call 800-ALFRED.
1: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरज़ू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए.
2: The Big Mix with Avni, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: माशाल्लाह क्या गाना था यार। कोई भी हुक स्टेप मुझे पूछो गाने का वो मुझे तुरंत आता है, लेकिन कोई मुझसे फाइनेंशियल एडवाइस पूछ ले, मेरे फाइनेंस खुद के पूछ ले, वो उसमें मैं निल बिट्टा सन्नाटा हो जाती हूँ।
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
0: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ। I know I'm not alone यार, ये बहुत लोगों की दिक्कत है। It's okay, हम अवेयर हो सकते हैं, नॉलेज और गेन कर सकते हैं। अगर आपको भी creditmarket.ae पर जाकर पूछना है कि कैसे लोन होता है, क्रेडिट कार्ड कैसे यूज़ करते हैं, मॉर्गेज क्या होता है, क्या कर सकते हैं हम, ऑल यू हैव टू डू जस्ट गो देयर creditmarket.ae। वन मोर वे Alfred कैन हेल्प यू, कॉल करना है 800 Alfred पर, या फिर आप विजिट कर सकते हो creditmarket.ae एंड ऑल और पर्सनल लोन कैसे लेते हैं, कौन सा क्रेडिट कार्ड यूज करें, कैसे करें, सब सॉर्ट हो जाएगा। ऑल यू नीड टू डू नाउ इज
2: गाने मेरे हित लावेंगा।
0: एग्जैक्टली ला ला ला। कमिंग अप इज द बिग थ्रिल विद मानसी। मैं जा रही हूँ, कल मिलती हूँ फिर से द बिग मिक्स पर 1 to 5। अंटिल देन कीप इट लॉक्ड ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: जब से झनकार से है दिल के तार में तब से।
1: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे। बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग द टाइम राइट नाउ 5:09।
2: Bollywood.

0: मेरा सेंस अभी वो बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा।
1: नाम है मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: Still stuck in your old car? It's time to upgrade the way you drive. Get your hands on the brand new 2027 models from Jetto T2, T1 and dashing range of SUVs. Now available on a 12-month lease from selfdrive.ae. Also, don't forget to check out our offers on Skoda Kodiaq, 4 exciting SUVs. With prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan, visit selfdrive.ae. TNC apply.
3: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
4: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
3: अलराज कहाँ है अलराज?
4: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
3: चलो चले अलराज।
5: टू स्प्लेंडेड इयर्स ऑफ इंश्योरेंस मार्केट मेट्रो स्टेशन फ्रॉम शेख जायद रोड टू योर स्क्रीन आई एम ऑलवेज नियर बाय इंश्योरेंस मार्केट .ae।
6: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
7: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
1: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलराज द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
8: 36 डिग्रीज है, लो जाएगा डाउन 31। फिलहाल ह्यूमिडिटी है 59% पर।
1: अलराज ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलराज.me। बिग 106.2।

0: What if insurance gave you more than insurance? Buy anything from insurancemarket.ae and get My Alfred Premium free for 1 year. Call 800-ALFRED.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Good evening, you have Big Thrill and Mansi. The weekend is right here, but traffic is also right here. And every single evening, when you are in traffic jam, we do jam here. Karaoke. Jam. Big Thrill
1: Karaoke.
2: माहौल बनाते हैं, ट्रैफिक में मन लगाते हैं, एंड आई थिंक एवरी सिंगल देसी पर्सन आउट देयर लव्स टू सिंग. दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म जहां पे नॉन सिंगर्स को मौका दिया जाता है. अगर आप गाना गाने का शौक रखते हैं, देन दिस इज इट. नाच का ये जो ट्रैक है, ये तो हर 90s के दिल टूटे आशिक का फेवरेट गाना था.

0: थिंक इससे ज्यादा दर्द भरा गाना, स्पेशली फॉर वन साइडेड लवर्स या फिर जिनका बंदा या बंदी भाग गई हो किसी और के साथ, बड़ा ही नहीं है. अल्टीमेट ब्रेकअप एंथम है ये फ्रॉम द 90s. अगर आपको याद आ गया है, आमिर खान का गाना है. 800-1062 इज द नंबर टू डायल. वी आर कारियोकिंग हियर.
1: कारियोकी

शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता, फिर अपन 1001 हिस्ट्री बनाएंगे। 106.2, the beat of Bollywood.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening. Thursday ki sham hai. While you're heading home, you're stuck in the jam. We jam here, the only platform for non-singers. Bathroom tak hi kyun rakhna apna talent? Hum Shekhzad Road tak le jaate hain.
0: Karaoke.
1: Filhal joining us is Zeeshan. Kaisa raha Thursday?
2: Bahut acha.
1: Hi. Sharmile type ke ho kya? Aap sharmate jaldi ho? लग रहा है मुझे. मैं ठीक हूँ सर. मैं थोड़ा शर्माना सीखना चाहती हूँ. वो एक टैलेंट है जो मुझ में है नहीं. फिलहाल करते क्या हैं ज़ीशान
2: जी? एक्चुअली मैं सीसीटीवी कंपनी में एज अ मैनेजर.
1: सीसीटीवी कंपनी में मैनेजर?
2: जी.
1: माइंड ब्लोइंग. तो मतलब बहुत सारे ऑफिस की फुटेज आप देखते होंगे. कुछ इंटरेस्टिंग दिखता है?
2: Exactly. नहीं, बस
1: अपना ही नेटफ्लिक्स, अपना ही एंटरटेनमेंट चलता होगा सारे दिन, जो आप बताते नहीं होगे किसी को. फिलहाल ज़ीशान गाना गाने का शौक रखते हो?
2: बिल्कुल बिल्कुल.
1: तो ये आप गाते हैं पार्टी वार्टी में कि बस बाथरूम तक ही रखते हैं ये शौक?
2: स्टार्ट बाथरूम से ही किया था, मगर जब यारों दोस्तों ने गाना शुरू किया तो
1: स्टार्ट बाथरूम से किया था. चलो गाना आपने पहचान लिया है. मैंने कहा ये अल्टीमेट ब्रेकअप एंथम है, तो अब ज़ीशान की आवाज में ये दर्द भरा गीत दोस्तों.
0: कारियोकी.

0: ओए होए होए, जीशान आपको दिख नहीं रहा है लेकिन मैं स्टैंडिंग ओवेशन दे रही हूँ आपको। आई डोंट थिंक सो, आज से पहले किसी ने इतना सुर में गाना गाया है एकदम एग्जैक्टली ऑन द ट्रैक। आप तो भाई प्रोफेशनल निकले। बहुत बढ़िया गाया है यार, बहुत बढ़िया गाया है। तो किसी के प्यार में आपने कभी गाना सुना है, सुनाया है? हुआ एक तरफा मोहब्बत
1: आपको? सुना भी है, सुनाया भी है, और जिससे प्यार करता था वो मिला भी है।
0: वो मिल भी गया है? तो किसी और का कहाँ रहा फिर, तो वो आपका हो गया।
1: बिल्कुल।
0: पर मैं मानती हूँ कि मोहब्बत जो है वो नाकाम ही सच्ची होती है, मिल जाए तो फिर उसकी उतनी कदर होती नहीं है। बट आपने गाना इतना अच्छा गाया ना कि बस मजा आ गया शाम।
1: Thank you so much.
0: वैसे मेरा तो अभी कोई स्कोप है नहीं, बट आपको ये सर्विस शुरू करनी चाहिए, जिसका भी दिल टूटे उनके घर जाके लाइव परफॉर्मेंस, बंदे को मजा आ जाएगा। हैव अ ग्रेट इवनिंग जीशान।
1: थैंक यू,
0: माइंड ब्लोइंग। थैंक यू। अगर आप भी गाना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड बहुत हाई सेट कर दिया जीशान ने। गिव मी अ कॉल 800-1062 पर।
2: Karaoke Beat 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Zeeshan ने स्टैंडर्ड ना यहाँ हाई सेट कर दिया है. इनफैक्ट वजाहत इज जस्ट कॉल्ड मी एंड ही सेइंग कि ज़ीशान ने क्या कमाल गाया है. गाया तो बहुत अच्छा है ज़ीशान ने, है ना?
2: जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा गाया है पूरा बीट पे और बहुत अच्छे सुर के साथ.
1: बिल्कुल, ये आ सकते हैं मुंबई. फिलहाल वजाहत, आप तो एक दो बार पहले भी गा चुके हो एंड आप भी कम कमाल सिंगर नहीं हो, बट पहले मुझे स्टोरी बताओ, ये गाना आपने कितनी बार सुना है और किसके लिए सुना है और किस किस के लिए सुना है?
2: बिल्कुल, ये गाना तो 90s का है और 90s ऑलवेज माय फेवरेट. और ये गाना जो है अक्सर पार्टीज वगैरह में गाया जाता
1: नहीं,
2: था.
1: ये सब मुझे मत बताओ, पार्टी लड़की बताओ.
2: लड़की जिसके लिए गाया था वो उसके बाद फिर शादी हो गई उसके साथ.
1: अच्छा, उसी के साथ हो गई, तो कहाँ से किसी और का प्यार रही, वो तो आप ही का प्यार रही ना.
2: नहीं, शुरू में हल्का फुल्का सा हुआ था जो कि अक्सर होता है, लेकिन इसके बाद फिर बात बन गई.
1: आपने मतलब गाना गा गा के अपना प्यार अपनी तरफ खींच लिया. फिलहाल गाना बड़ा कमाल है, अब सुनते हैं वजाहत की आवाज में.
0: Karaoke.

0: पसंद है किसी और की, तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है।
1: ओए होए होए, आज तो सारा टैलेंट बिग थ्रिल पर आ चुका है, कमाल गाया है। आई डोंट हैव टू से यू आर अ फैंटास्टिक सिंगर। सपना रह गया मेरा कि कोई रियल लाइफ में लड़का गाए तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। मुझे तो अक्सर दूसरों के प्यार मिलते हैं जो मुझे बाद में पता चलते हैं कि वो दूसरों के थे। बट बड़ा अच्छा गाया आपने, वजाहत मजा आ गया।
0: थैंक यू मासी, थैंक यू सो मच, और यू प्लेइंग अ वेरी ब्रिलियंट जॉब।
1: थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच,
0: माय प्लेजर ऑलवेज,
1: हैव अ ग्रेट इवनिंग, बाय। यही है कैरियोकी, हम हर शाम करते हैं व्हाइल गोइंग बैक होम। दिस इज द परफेक्ट वे टू अनवाइंड एंड रिलैक्स। तो अगर आप भी गाना गाने का शौक रखते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 0543091062 पर।

0: When she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit.
1: Good evening, you have Big Thrill of Mansi. And while you're stuck in the traffic, we play this fun game. It's called the 5-second rule. You get 5 seconds. I give you some categories. Three things you have to tell in 5 seconds. I know it sounds very, very easy. But it's not so easy. It's not a laddu game. It's a jalebi. If you think you can crack it, give me a call. 800-1062. For now, all the husbands listening to me right now. आज है नेशनल वाइफ अप्रिसिएशन डे. एंड अगर आपने काफ़ी दिनों से तारीफ नहीं की है बीवी की, तो आज मौका भी है, दस्तूर भी है. वैसे वाइफ्स, आई वांट टू आस्क यू कि कितनी तारीफ होती है शादी के बाद, कितनी बार बोला जाता है कि हाय चांद में मैं तुमको देख रहा हूँ. ये सब शादी से पहले होता है कि शादी के बाद कंटिन्यू करते हैं पतीज़. लेट मी नो 800-1062 पर. किक स्टार्टिंग दिस आवर विद

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 6:08।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Introducing Alfred Coins, the new way insurancemarket.ae rewards you. Buy insurance. Earn Alfred Coins. Enjoy rewards. Call 800-ALFRED.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: हां जी, यह है बिग थ्रिल मानसी एंड फिलहाल आ चुके हैं सैयद अली प्यार के दुश्मन। हाय हाय, वो तैयब अली थे राइट?
3: जी तैयब अली थे। आप हमेशा मुझे ऐसे ही इंट्रो करवाती है।
2: तो आप प्यार के दुश्मन हो कि नहीं हो?
3: ऐसे कोई दुश्मनी नहीं है, प्यार तो प्यार होता है, दुश्मनी क्या करनी उससे।
2: तो है आपकी जिंदगी में ऐसी कोई मोहब्बत?
3: हाँ,
2: बहुत बढ़िया। आज के दिन ऐसी बातें मत करो, आज है वाइफ अप्रिसिएशन डे। कितनी तारीफ करते हो सैयद बीवी के दिन में?
3: अनगिनत वाइफ का है तो कुछ बोल ही नहीं सकते, काउंटिंग हो सकती है वहाँ पे?
2: नहीं मतलब एक आधा लाइन जो आप ऐसे प्यार में बोल देते हो, क्योंकि जब शादी नहीं होती है ना तो लड़के बहुत रोमांटिक लाइन्स बोलते हैं कि मैं चांद को देख रहा हूँ और चांद में मुझे तुम नजर आ रही हो। क्या शादी के बाद चांद में बीवी नजर आती है कि नहीं आती है?
3: आती है, आती है, अच्छे से नजर आती है।
2: डर डर के बोल रहे हैं ना, जो अच्छे से नजर आती है। मैं समझ गई।
3: नहीं नहीं, डर के नहीं कह रहा हूँ, अब आप समझ सकती हैं, अच्छे से नजर आती है कह रहा हूँ मैं।
2: सर मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ, इसलिए मैं बहुत दूर हूँ अभी शादी नाम के इस गेम से। फिलहाल
3: आपका दुख मुझे पता है,
2: मेरा बहुत सुख है, दुख मुझे आपका लग रहा है। फिलहाल अब आप यहाँ आए हो तो थोड़ा मजा करेंगे, हम खेलेंगे एक मजेदार गेम।
4: 5 second rule.
2: Oh yeah. आपको मिलेंगे 5 second, मैं आपको दूंगी कुछ कैटेगरीज, 3 चीजें बतानी है 5 second के अंदर, बिना सोचे दिल से जो आवाज आए वही जवाब है, ठीक है? 3 things that white in color you can eat.
3: खीर, दही, दूध।
2: वेरी नाइस सर, मतलब किचन में जाते हो आप, बीवी की हेल्प कराते हो आप?
3: हाँ, बनाता हूँ, जब बनाता हूँ मैं।
2: हाँ, बना तो नहीं रहे हो ना मुझे। फिलहाल 3 ऐसी आपकी आदतें जो वाइफ को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है।
3: Watching cricket over the phone every time.
2: ओए, time खत्म। 3 romantic nicknames जो आपने अपनी darling wife को दिए हैं।
3: Dumbo, जानू, शोना।
2: ओए, so cute. तो करते हो क्या, मेरे शोना ने खाना खाया, मेरा शोना गुस्सा है?
3: नहीं, मैं ज्यादातर डम्बो बुलाता हूँ।
2: वेरी नाइस, वो आपको क्या बुलाती
3: है? वो है नहीं।

0: सो क्यूट। तो करते हो क्या, मेरे शूना ने खाना खाया, मेरा शूना गुस्सा है?
1: नहीं नहीं, मैं ज्यादातर डम्बो बुलाता हूँ।
0: वेरी नाइस। वो आपको क्या बुलाती
1: है? वो है नहीं, वो नाम से, वो भी ऐसे कुछ डफर बुलाती।
0: वेरी क्यूट, आई लव दीज निकनेम्स। तीन गाने जिनमें इश्क आता है।
1: प्यार, इश्क और मोहब्बत।
0: और
1: तू प्यार और का
0: नहीं, उसमें इश्क नहीं आता।
1: 5 सेकंड में गाने कहाँ से होंगे?
0: टाइटल सर, गाने को नहीं गाता मैंने। टाइटल, इश्क हुआ कैसे हुआ, आधा इश्क, इश्क बिना क्या जीना यार, बहुत सारे हैं। हाँ, तीन सलमान खान की मूवीज।
1: तेरे नाम
0: और
1: कभी कुछ होता है, तेरे नाम।
0: हो गया, टाइम खत्म हो गया। फटाफट फटाफट, तीन झूठ जो आप बीवी से बोलते हो दोस्तों से मिलने के लिए।
1: आज हम लोग लंच पे जा रहे हैं।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, टाइम खत्म हो गया। नॉट बैड बट
1: थैंक यू,
0: ठीक ठाक खेला आपने पहली बार के हिसाब से, मजा बड़ा आया। एंड करना घर जाके बेगम की तारीफ, आपकी शोना की तारीफ, आज वाइफ अप्रिसिएशन डे। डिनर विनर आप ही बना देना फिर, ज्यादा हो गया नहीं?
1: मानसी जी आप कह रही है तो सबको हो, बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन करना तो पड़ेगा।
0: गिफ्ट दे देना, डिनर चाहे मत बनाना, बाहर से मंगवा लेना।
1: नहीं नहीं, बना के खिलाने की बात अलग होती है।
0: आई अग्री, आई अग्री। आई थिंक लव लैंग्वेज सबसे अच्छी वो होती है जब कोई आपको अपने हाथों से कुछ बना के खिलाए।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल,
0: प्यार में खाना बना के खिलाओ, लोगों को मत बनाओ। हैव अ ग्रेट इवनिंग, बाय
1: बाय, थैंक यू।

0: 106.2, the beat of Bollywood.
1: High-speed autobahns, majestic Bavarian castles, the ultimate European adventure is calling your name. The big check-in is back, and it's bigger than ever. So pack your bags, because Big 106.2 is taking you to Germany. Presenting sponsor, Daniel Properties. This isn't just a holiday, it's a golden ticket to the heart of Europe. Ready to board? Just send us a WhatsApp. Big check-in, your name, to 054-309-1062. The big check-in to Germany, only on Big 106.2.
2: Still stuck in your old car? It's time to upgrade the way you drive. Get your hands on the brand new 2027 Mazda from Jetto T2, T1 and dashing range of SUVs. Now available on a 12-month lease from selfdrive.ae. Also, don't forget to check out our offers on Skoda Kodiaq, four exciting SUVs. With prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan, visit selfdrive.ae. T&C apply.
3: Creditmarket.ae. You know me from insurancemarket.ae. Now let me simplify your money. Credit cards, loans, mortgages. Creditmarket.ae. Call 800 Alfred. Alfred simplifies money.
4: Missed your morning buzz?
5: Yes
4: or no?
6: Arbaaz bhai, mere saath radio pe baat kar rahe hain. Ye Arbaaz bhai, kya kar rahe ho yaar? Daant padegi to?
7: कोई डांट नहीं पड़ेगी सर, एवरी डे इट्स अ हैबिट नाउ.
6: इट्स अ हैबिट फॉर यू और योर बॉस कि आप लेट आते हो?
7: ना, फॉर मी इट्स ऑलवेज वंस इन अ मंथ. यू नो आई हैव अ ट्रैक रिकॉर्ड. वी हैव लेट डिडक्शंस फॉर द ऑन द सैलरीज द मोमेंट यू लेट अराइव लेट.
6: Okay.
7: 9 years I have been working in my company. Not even a single month I have received a full salary.
6: अरे क्या बात है! मुझे लगा बोलोगे not even a single time कि मैं default किया है, लेकिन आप कह रहे हो एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि मैंने डिफॉल्ट नहीं किया है.
7: You know, Sid bhai, the best part, I am someone who, if I am late for 5 minutes, na, then I'll sleep fully till 9 o'clock. छोड़ो अभी, हो गया तो हो गया. Because टॉन्ट तो 10 मिनट पे भी पड़ना है मैनेजर से.
6: वो तो
7: why can't
6: वो कहते हैं ना, वो कहावत है ना कि भाई एक खून की सजा भी फांसी है और दो खून की भी तो. अरबाज भाई, आपके जैसा ट्रैक रिकॉर्ड भगवान सबको दे, इज व्हाट मेरी उम्मीद है भाई. हम नहीं सुधरेंगे, जो गैंग है उसका लीडर हूँ, आपको पता ही होगा. हम सुधारने वालों.
1: एनर्जी एंड एक्शन मंडे टू फ्राइडे 7 AM to 11 AM द बिग ब्रेकफास्ट विद सिड ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
8: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
9: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
1: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
10: 36 डिग्रीज है, लो जाएगा अराउंड 31. फिलहाल ह्यूमिडिटी 62% पर.
1: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25+ आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द UAE, ओमान, कतर, KSA एंड बहरेन. विजिट अलरास.me. बिग 106.2.

0: तुम बीमार हो?
1: नो।
0: तो लेती क्यों?
1: मेरी बॉडी में सेंसेशंस होते हैं, पर उनको कंट्रोल करते हैं।
0: कैसे है सेंसेशंस?
1: सेंसेशंस जैसे सरसराहट, सनसनाहट, दिल को धड़क धड़क कर फरार थर थरार टपक पार थर वरार थर थरार टपक पार थर वरार थर थरार टपक पार थर वरार थर थरार टपक पार थर वरार थर थरार टपक पार थर वरार थर थरार टपक पार थर वरार थर थरार टपक पार थर वरार थर थरार टपक पार थर वरार थर थरार टपक पार थर वरार थर थरार टपक पार थर वरार थर थरार टपक पार थर वरार थर थरार टपक पार थर वरार थर थरार टपक पार थर वरार थर थरार टपक पार थर वरार थर थरार टपक पार थर वरार थर थरार टपक पार थर वरार थर थरार टपक पार थर वरार थर थरार टपक पार थर वरार थर थरार टपक पार थर वरार थर थरार टपक पार थर वरार थर थरार टपक पार थर वरार थर थरार टपक पार थर वरार थर थरार टपक पार थर वरार थर थरार टपक पार थर वरार थर थरार टपक पार थर वरार थर थरार टपक पार थर वरार थर थरार टपक पार थर वरार थर थर

0: यू नो मैंने लाइफ में बहुत सारे गलत डिसीजन लिए हैं, बट एक सबसे अच्छा डिसीजन लिया है ऑफ रेंटिंग अ कार, वो भी थ्रू selfdrive.ae.
1: द बिग थ्रिल विद मानसी ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: आई कैन राइट अ बुक कि कितने फायदे हैं जब आप गाड़ी रेंट करते हो. फिलहाल बैक टू स्कूल सीजन है एंड इफ यू लुकिंग फॉर कार रेंटल्स एज वेल, गेट स्कूल रेडी विद सेल्फ ड्राइव. रेंट अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम 1099 dirhams अ मंथ. एग्जैक्टली 1099 dirhams अ मंथ, ये फ्लैट रेट है फॉर द एंटायर ईयर. Zero penalty hai if you plan to return the gaadi early. Do get in touch with them. They've got some fantastic options. Selfdrive.ae it is.
1: Beat 106.2. Fast track song of the hour. Brought to you by Selfdrive.ae.

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास। चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ही वायरल हो गया गाना ऑन इंस्टाग्राम थैंक्स टू गणेश चतुर्थी. फिलहाल आज वी आर ऑल्सो सेलिब्रेटिंग योर वाइव्स. आज है नेशनल वाइफ अप्रिसिएशन डे.
1: द बिग थ्रिल विद मानसी ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: जो बीवी से करे प्यार वो सच्ची हो या झूठी तारीफ से वाह वाह कैसे करे इनकार. वैसे ऑन अ सीरियस नोट मेरा एक सवाल है. इनफैक्ट देयर इज अ पोल अप ऑन इंस्टाग्राम पेज 106.2 बिग एफएम. क्योंकि शादी के पहले जब बीवी बीवी नहीं गर्लफ्रेंड होती है तो अक्सर मैंने मूवीज में भी देखा है आसपास जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन्हें देखा है कि वो चांद में भी अपनी महबूबा को देखते हैं बड़ी तारीफें करते हैं कि तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है टाइप्स. शादी के बाद क्या ये तारीफें कंटिन्यू होती हैं या फिर आटे दाल चावल के भाव में तारीफ कहीं गुम हो जाती है. दैट इज द पोल. सो गो एंड चेक इट आउट. आई हैव गॉट अ लवली लवली मैसेज फ्रॉम राकेश. ही सेज कि आज का दिन मुझे याद रहेगा क्योंकि मेरी बीवी ने मुझे कल रात को ही एक रील भेजी थी अबाउट सेलिब्रेटिंग वाइफ अप्रिसिएशन डे. सो फॉरगेटिंग दिस डे इज एन इमीडिएट नॉन नेगोशिएबल डिमोशन टू द लिविंग रूम काउच टुनाइट. तो मैं ये 100% करने वाला हूँ आज. आई थिंक दिस सो मच दैट यू कैन डू टू अप्रिशिएट योर वाइफ. ऑर्डर हर फेवरेट फूड, प्रॉब्ली गेट हर सम फ्लावर्स, प्ले हर फेवरेट सॉन्ग एंड गो ऑन अ ड्राइव एंड आई कैन प्ले दैट सॉन्ग फॉर यू. बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आज आप रात को खाना खाने के बाद डिशेस कर दें एंड अपना क्रेडिट कार्ड उसे दे दें. मतलब शॉपिंग से ज़्यादा एज अ वुमन आई एम टेलिंग यू नथिंग मेक्स अस हैप्पियर मोर देन शॉपिंग. सो वट आर यू डूइंग, हाउ आर यू सेलिब्रेटिंग दिस डे? डू गेट इन टच विद मी ऑन आर इंस्टा हैंडल 106.2 बिग एफएम. एंड द वाइव्स, इफ यू आर लिसनिंग टू मी राइट नाउ, याद भी है पतियों को कि आज आपको अप्रिशिएट करने का डे है.

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, winks, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit.
1: गुड इवनिंग, यह बिग थ्रिल मानसी एंड थ्रिल एंड एक्साइटमेंट तो आपको होना चाहिए. अगर आपने व्हाट्सएप कर दिया है तो फोन अपने पास रखो. आई एम टॉकिंग अबाउट द बिग चेक इन टू जर्मनी. वी टेकिंग यू टू जर्मनी दिस ईयर, दैट टू इन विंटर्स. एंड अगर किस्मत ने साथ दिया तो हो सकता है जिन्होंने नहीं देखी है अब अपनी जिंदगी की पहली स्नोफॉल भी देख लें. बट ये सब देखने के लिए, ये सब इंजॉय करने के लिए व्हाट्सएप करना बहुत जरूरी है. इफ यू हैव नॉट रजिस्टर्ड येट, प्लीज डू इट राइट अवे. बिग चेक इन योर नेम टू 0543091062. If you've already WhatsApped, make sure you're in the network and phone ko apne paas rakho. Ye call miss ho gaya to Germany jaane ka mauka bhi shayad miss ho jaye. In about 10 minutes, I'll be running the randomizer. Ho sakta hai agla number aap hi ka lag jaye.
2: Mom,

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक 7:06। Bollywood.

0: मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा।
1: नाम है मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: ए सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची के एसी कहाँ मिलेगा बताना।
3: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
2: अलरास बोले तो
3: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा सज्जादेरा रसल खोर अलकूज गुसेस अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं।
2: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर।
4: Still stuck in your old car? It's time to upgrade the way you drive. Get your hands on the brand new 2027 models from Jetro T2, T1 and dashing range of SUVs. Now available on a 12-month lease from selfdrive.ae. Also, don't forget to check out our offers on Skoda Kodiaq. Four exciting SUVs with prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. T&C apply.
5: This Navratri experience the festive souk exhibition on 26 September from 10 a.m. to 10 p.m. at Almas Conference Center, right next to DMCC Metro Station. Shop from 45 plus exhibitors featuring festive fashion, jewelry, home decor and more. Kids activities, exciting competitions, the UAE's Got Talent Season 8 Grand Finale, plus chances to win staycations and dinner vouchers. Entry and parking free. Brought to you by Kids R Us. With Divalicious Beauty Saloon, jewelry partner Biani Jewels. Event made large by Big 106.2.
6: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
7: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
1: Big weather update brought to you by Alras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
0: 35 degrees है, लो जाएगा around 31, but काफी humid माहौल, 63% पर है humidity.
1: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me.

0: the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
1: Exactly, it's time to fly with Team Big. We're taking you to Germany and kal aakhri din hai. Agar aapne abhi tak register nahi kiya hai, do it right now. Just send us a WhatsApp, Big Check-In, apna naam 0543091062 par. Filhal randomizer ne dhoon liya hai Khushbu madam ko. Wo Nawazuddin Siddiqui ka dialogue tha na, Khushbu tak करके एकदम एंड मोमेंट पे आ गया, वही हुआ है। एक बार नेटवर्क नहीं था, दूसरी बार कॉल नहीं लग रही थी,
2: पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन नहीं टक करके वाला है ना, तो आई थिंक हो जाएगा।
1: हाँ फिलहाल ये डीपी तो बड़ी क्यूट है, ये पिंक गाड़ी है, कहाँ वर यू ट्रैवलिंग समवेयर?
2: नो इट्स नॉट ट्रैवलिंग, इट्स अ कैब्स कैफे इन दुबई।
1: महंगी जगह होगी, मुझे नहीं पता इसके बारे में। फिलहाल खुशबू, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू ट्रैवल्ड?
2: Yeah, I traveled just last month. हम लोग स्विट्जरलैंड ही गए थे।
1: आपको हमारी जरूरत क्या है, आप इतने बड़े बड़े महंगे कैफे में जा रहे हो, स्विट्जरलैंड अभी होकर आए थे।
2: किसी और को मौका दे दो
1: खुशबू।
2: नहीं प्लीज,
1: फिलहाल आई एम गिविंग यू अ चांस शॉर्टलिस्ट होने का। And this is going to be a fun trip to Germany. We're a bunch of fun people to travel with. Filhal shortlist hone ka mauka hai. To aapki GK kaisi hai? Theek thaak hai?
2: Maybe.
1: मतलब आप भी चैट जीपीटी वाले हो, फिलहाल चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो। आई एम गोना आस्क यू अ क्वेश्चन व्हिच इज रिलेटेड टू जर्मनी। इफ यू मैनेज टू गिव मी द राइट आंसर, यू विल बी शॉर्टलिस्टेड टू दिस फैंटास्टिक ट्रिप दैट वी आर टेकिंग टू जर्मनी। ऑल द बेस्ट।
2: ओके थैंक यू।
0: पार्टिसिपेट इन द बिग चेक इन कॉन्टेस्ट एंड गेट अ चांस टू विन अ ट्रिप टू जर्मनी विद टीम बिग। प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर डैन्यूब प्रॉपर्टीज। टाइटल स्पॉन्सर पापा जॉन्स। एसोसिएट स्पॉन्सर्स फोर्ड एंड शराफ डीजी। ट्रैवल पार्टनर एएफसी हॉलीडेज। एक्सक्लूसिव on Big 106.2.
1: All right, Khushbu, your question is, what traditional leather shorts that are famously worn in Bavaria during festivals called? Are these the kilt, the leather hosen, or the denims?
2: Can you repeat the question?
1: के जो लेदर शॉर्ट्स होते हैं विच आर फेमसली वोन इन द बवेरियन रीजन इन जर्मनी ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, उन्हें क्या कहते हैं? डू वी कॉल इट द किल्ट, द लेदर होसन और डेनिम्स?
2: सेकंड ऑप्शन आई थिंक यू सेड।
1: क्या है सेकंड ऑप्शन?
2: वॉइस एक्चुअली क्लियर नहीं है, सेकंड ऑप्शन क्या था?
1: सब क्लियर है, इसे बोलते नहीं बन रहा है सेकंड ऑप्शन, लेदर होसन। देसियों को ना जब कुछ आता नहीं है ना जवाब, हम बोलते सॉरी आवाज कट रही है। मैं भी अपने रिश्तेदारों को ऐसे बोलती हूँ।
2: अभी देखिए जेन्युइन है, अभी दो बार में मिला ना फोन।
1: सही जवाब बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कंग्रेचुलेशंस खुशबू जी, आप हो गई हैं शॉर्टलिस्ट फॉर दिस ट्रिप टू जर्मनी। फिंगर्स क्रॉस, अगली बार जब फोन आए तो प्लीज पड़ोसी के घर चले जाना जहाँ नेटवर्क हो। बिल्कुल, मैं कह रही हूँ हमारे ऑफिस के नीचे ही आ जाना, थोड़ा अच्छा क्लैरिटी मिलेगी। ऑल द वेरी बेस्ट खुशबू, फिंगर्स क्रॉस, होपफुली द नेक्स्ट कॉल दैट यू गेट इज दैट वी आर फ्लाइंग यू टू जर्मनी एंड पैक योर लेदर शॉर्ट्स। ऑलराइट, बाय
2: बाय।

0: आया रे तू
1: वाइल्ड फायर है।
2: मेरा नाम है पुष्पा, पुष्पराज अपने दम पे बनाए मैं नाम काफी है, पहचान की जरूरत नहीं है।

0: रियली लाइक टू थैंक पीपल जिन्होंने मुझे समझाया कि गाड़ी रेंट करने में ज्यादा फायदा है, इंश्योरेंस की टेंशन मुझे है नहीं, रोड साइड असिस्टेंस की टेंशन मुझे नहीं है और गाड़ी के रिपेयर की टेंशन भी मेरी है ही नहीं।
1: द बिग थ्रिल विद मानसी ऑन बिग 106.2
0: तो अगर आप भी टेंशन फ्री गाड़ी चलाना चाहते हैं देन रेंट योर कार selfdrive.ae से। इनफैक्ट दे हैव गॉट सम फैंटास्टिक बैक टू स्कूल डील्स, गेट स्कूल रेडी विद देम। यू कैन रेंट अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम 1099 दिरहम्स अ मंथ, एग्जैक्टली फ्लैट रेट है पूरे साल का, जीरो पेनल्टी है फॉर अर्ली रिटर्न्स एंड दे हैव गॉट सम फैंटास्टिक ऑप्शंस फॉर योर स्कूल रन्स। डू गेट इन टच विद देम राइट नाउ selfdrive.ae पर।
1: Big 106.2 Fast Track Song of the Hour brought to you by selfdrive.ae।

0: इस वक्त घर जाते हुए यू वंडरिंग कि यार ये कैसा ऑफिस है, मैं कहाँ काम करता हूँ, तो ये सुनो।
1: द बिग थ्रिल विद नांसी ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: Yeah, big thrill, Mansi, and let me tell you, every single employee who goes to office spends maximum time chai coffee peete peete, and wo office ki chai coffee ka swad hi alag hota hai. Ab ek major IT firm in Bangalore is going viral after the HR issued a formal company-wide email addressing a major crisis in the office. Email mein likha tha that the company was facing an unprecedented drain on resources. Because employees जो हैं वो green tea and sugar sachets अपने घर ले जा रहे हैं चोरी करके। New HR policy इनकी ये है कि green tea bags and sugar sachets were placed under lock and key. अगर किसी employee को green tea पीनी है, sugar चाहिए, they have to physically walk in to the HR desk, sign a register and log their employee ID to receive a single tea bag. हाई लेवल सिक्योरिटी ऑफिस की सिंगल टी बैग पर एचआर ये नहीं सोच रहे हैं कि बंदा जो है अगर शक्कर और चाय ऑफिस से चुरा रहा है तो टाइम हो गया है उसके अप्रेजल करने का। जब ये सब खबरें मैं पढ़ती हूँ मुझे लगता है आई शुड बी वेरी वेरी ग्रेटफुल। एटलीस्ट चाय कॉफी शक्कर भरपूर है हमारे ऑफिस में, आई एम श्योर आपके भी ऑफिस में। सो देयर आर सर्टेन एचआर पॉलिसीज दैट रिमाइंड अस वी आर ब्लेस्ड एंड वी शुड बी ग्रेटफुल।
1: बिग 106.2

0: Autobahns, majestic Bavarian castles, the ultimate European adventure is calling your name. The Big Check-In is back and it's bigger than ever. So pack your bags because Big 106.2 is taking you to Germany. Germany. Presenting sponsor Danube Properties. Title sponsor Papa John's. Associate sponsors Ford and Sharaf DG. Ethnic partner Bavri and Kora. Travel partner AFC Holidays. Ready to board? Just send us a WhatsApp. Big Check-In, your name to 054-309-1062. The Big Check-In to Germany. Only on Big 106.2. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae. The Big Jill.
1: All my favorite music in one spot.
0: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae. The Big Mix. Miss kiya gaya?
2: Inkar hi nahi sakte. चाहो भी तो नहीं कर सकते हो।
3: हाय निहार।
4: हाय अपनी।
3: क्या काम करते हो?
4: तो आई वर्क विद अ फिनटेक, तो मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, तो घर से ही काम कर रही थी।
3: अब मुझे बताओ, वर्क फ्रॉम होम वाले ट्रिप पे जाके क्या माहौल बनाएंगे?
4: अब ट्रिप पे जाएंगे तो यार जितना भड़ास है जो लोगों से नहीं मिल रहे उतनी वहाँ जाके निकाल लेंगे।
3: ओके, वी गोना प्ले जीके कॉन्टेस्ट विद यू। जर्मन नॉलेज आपकी कितनी स्ट्रांग है हम चेक करते हैं। व्हाट करेंसी इज यूज्ड इन जर्मनी टुडे? ऑप्शंस आर पाउंड, यूरो और डॉलर्स।
4: यूरो।
3: अरे सोच तो लो।
4: यूरो।
3: मतलब वर्क फ्रॉम होम वाले इतने डेडिकेटेड है कि उनको आंसर से दिमाग में चढ़ा होता है, पता ही होता है।
4: इतना तो पता है।
3: Congratulations, that's actually the correct answer.
4: Thank you. और मैं तो उड़ने के लिए रेडी हूँ।
0: Cheer your midday mood Monday to Friday 1 to 5 p.m. The Big Mix with Avni. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
3: Still slow moving, a 25 to 30 minute delay if you're on Sheikh Zayed, and patchy traffic on the Sheikh Mohammed bin Zayed again, 20 minute ka delay. Dera se Nahada, bahut hi slow moving traffic hai. It is kind of standstill until Reef Mall. Also heavy traffic agar aap is waqt hai near Dubai Gold Souk, that is Fahidi. If you're going towards Satwa, जुमेरा रोड पे, जुमेरा वन के आसपास बहुत ही पैची ट्रैफिक है। हैवी ट्रैफिक अल वसल के आसपास, एंड ऑल्सो अ 15 टू 20 मिनट डिले राइट नाउ इफ यू आर अराउंड द अलकूज इंडस्ट्रियल एरिया। एनीथिंग एल्स यू लाइक टू रिपोर्ट मुझे बताइए 800-1062 पर।
5: नाउ लीज अ ब्रांड न्यू एसयूवी फ्रॉम जेटवॉट एंड स्कोडा, प्राइसेस स्टार्टिंग फ्रॉम 1999 दिरहम्स पर मंथ फॉर अ 12 मंथ प्लान। विजिट selfdrive.ae। टीएनसी अप्लाई।
0: बिग 106.2।

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास। चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: हेलो,
1: कोई रोमांटिक गाना सुनाओ ना। हेलो, सुन रहे हो ना?
2: हे

0: गुंडा, कातिल, जेल से भागा हुआ मुजरिम, शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं।
1: बिग 106.2

0: people compare before they buy, especially insurance. Let insurancemarket.ae find you great cover at a great price. Why pay more? Call 800-ALFRED.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: आज ही के दिन 2009 में ये बहुत ही बड़ी मूवी थी, तब की रिलीज हुई थी, दो बॉक्स ऑफिस पे मिक्स्ड रिव्यूज थे। रानी मुखर्जी, शाहिद कपूर, शर्लिन चोपड़ा, साथ में राखी सावंत। द मूवी वाज बेस्ड ऑन क्रिकेट एंड रानी मुखर्जी प्लेड द कैरेक्टर ऑफ अ बॉय। यस, रानी मुखर्जी ने अपने कई इंटरव्यूज में कहा है कि घंटों लगते थे फॉर हर टू ट्रांसफॉर्म इंटू द कैरेक्टर ऑफ वीर प्रताप सिंह एंड शी हैड टू स्पेंड आवर्स इन मेकअप एवरी सिंगल डे। Her transformation included a customized turban, a fake beard, and of course, she underwent a lot of vigorous cricket training for months to make her batting and her bowling look authentic on screen. Cricket ground ki agar main baat karu, jo stadium dikhaya gaya movie mein was not a real stadium. Yashraj film

practiced cricket training for months to make her batting and her bowling look authentic on screen. Cricket ground ki agar main baat karun, jo stadium dikhaya gaya movie mein was not a real stadium. Yash Raj Films ne ek massive detailed stadium set banaya tha in the outskirts of Mumbai. शाहिद कपूर, रानी मुखर्जी, प्रीतम का मैजिक, कमाल गाने थे. बहुत हाइप थी इस मूवी की, बट अनफॉर्चुनेटली ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे कुछ खास कमाल नहीं कर पाई. एंड सही जवाब है दिल बोले हड़प्पा. आई हैवन सीन द मूवी येट. गाने इस मूवी के कमाल थे, चाहे भंगड़ा बिस्तर हो या फिर द टाइटल ट्रैक. एंड शर्लिन चोपड़ा, राखी सावंत दोनों सपोर्टिंग एक्टर्स थे इस मूवी में. फिल्म ऑल्सो मार्क द डायरेक्टोरियल डेब्यू ऑफ अनुराग सिंह. दो दिल बोले हड़प्पा कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी, बट लेटर ही मेड सम ब्रिलियंट पंजाबी सिनेमा. बी इट जट एंड जूलियट सीरीज अनुराग ने ही बनाई है, साथ में केसरी अगर आपको याद हो जो 2019 में आई थी. सो यस, सेलिब्रेटिंग दिल बोले हड़प्पा आज शाम. आई हैवन सीन द मूवी एंड आई लव इट. आई टॉक अबाउट दीज मूवी but I haven't seen the movie, but we love the music, so playing you this one Mika Paji ki awaaz mein.

0: 106.2, the beat of Bollywood. Two best friends, one dangerous mission, and chaos they never saw coming.
1: तुम दोनों हमारे लिए इंटेल कलेक्ट करोगे और इस मिशन का हिस्सा बनोगे।

0: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
1: It doesn't get bigger than this, and this is the very last week. In fact, a last day here for you to get yourself a chance, a place in the Big Check-In to Germany. And अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, please do it right away. एक फ्री WhatsApp मैसेज क्या पता आपको सीधा हमारे साथ जर्मनी ले जाए. To participate, all you need to do is send us a message, Big Check-In, your full name to 054-309-1062. Can't wait to experience winters in Germany. It is stunning. More than 60% of Germany is covered with dense forests. So, हरियाली ही हरियाली, great company, best part ये है. Free trip है. जो भी जिंदगी में फ्री मिलता है मुझे बड़ा अच्छा लगता है. तो आपको मिल रहा है मौका एक फ्री ट्रिप का. अगर यहाँ नंबर नहीं लग पा रहा है, यू कैन गेट इन टच विद अस थ्रू आर इंस्टा हैंडल. यू कैन पार्टिसिपेट थ्रू आर इंस्टा रील 106.2 बिग एफएम इट इज. सो मेक श्योर दैट यू सेंड इन ऑल योर एंट्रीज. कल आखिरी दिन है. कल रात 9 बजे तक अगर आप रजिस्टर कर लेते हो तो आप ही का फायदा है. एंड रैंडमाइजर ने अगर आपका नाम निकाल लिया तो शॉर्टलिस्ट होने का मौका आपको मिलेगा. जस्ट कीप ब्रशिंग योर जीके, दैट इज योर जर्मन नॉलेज.
0: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: And iske saath good night kehne ka time. I'll see you tomorrow. We'll bring in the weekend together. Filhal, aaj main ek adventure pe nikli hoon. After I leave the office, main jaane wali hoon. Man cool. Lag to bahut cool raha hai ki is waqt traffic nahi hoga, but दिल की धड़कनें बहुत तेज हैं. आई फील लाइक कि मैं खतरों का खिलाड़ी हूँ, क्योंकि उस तरफ गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल है. सो विश मी लक. फिलहाल डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन सोशल्स. 106.2 बिग एफएम इट इज. यू कैन से हाय टू मी. आई एम मानसी टॉकिंग. आई विल सी यू टुमारो. वी विल ब्रिंग इन द वीकेंड. गुड नाइट.

सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड. सम नाइट्स नीड नो वर्ड्स, जस्ट द राइट वाइब. सिंक इनटू द बिग चिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: Big 106.2, the beat of Bollywood. The Big Chill, brought to you by InsuranceMarket.ae. For the best insurance deals in the UAE, call 800-ALFRED 24/7. Listen to her every day.
1: Mugambo! खुश हुआ।
2: हाय धवल।
3: हाय मानसी।
2: ये जो दिल बनाया हुआ है ये डीपी पर, ऑफ कोर्स वाइफ के लिए होगा ना धवल, अपनी डीपी में साइड में किसी को देख रहे हैं और नीचे दिल बना हुआ है।
3: बस मैं उनको ही देखता हूँ दिन रात सुबह शाम, इट्स ओनली हर, नो वन एल्स।
2: वेरी नाइस। विल शी लेट यू गो अलोन टू जर्मनी?
3: ऑप्शन है तो क्यों नहीं, एक सोलो ट्रिप हो जाएगा तो अच्छा होगा।
2: जितनी भी मोहब्बत कर लो अपने मियाँ से, अपनी बीवी से, सोलो ट्रिप की ख्वाहिश हर शादीशुदा बंदा करता ही है। ऑलराइट धवल, सो योर क्वेश्चन इज, व्हिच फेमस जर्मन माउंटेन रेंज is known for scenic hikes and a lot of winter sports in the south. Teen options bhi de rahi hun, ghabrana mat. Number one hai the Bavarian Alps, number two the Rockies, three is the Himalayas.
3: The Alps.
2: Are you sure?
3: Yes, 100% sure.
2: Chat GPT se pucha hai na ye?
3: Nahi nahi, ab tak to nahi, main drive kar raha hu, on the way ghar ja raha hu.
2: Bilkul sahi jawab, aap ho gaye shortlist Dhaval, fingers crossed.
0: Keep your evenings electric, 5 PM to 9 PM, The Big Thrill with Mansi, only on Big 106.2, the beat of Bollywood. The Big Chill, where every song feels like a deep breath after a long day, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
2: दो या चार?
1: चार।
2: कब तक वापस लौटेगा?
1: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
2: चार या
1: पांच? पांच।
3: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। ओटीटी पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM and Sunday 10 AM to 12 PM only on Big 106.2 The Beat of Bollywood। आप सुन रहे हैं Big 106.2 The Beat of Bollywood।

0: Some nights need no words, just the right vibe. Sink into the big chill, only on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: जितना भी ट्राई करो भी लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही।
2: बिल्कुल नहीं छूटेगा, क्योंकि होमवर्क भी मेरा, रिसर्च भी मेरी, बट प्लान होगा आपका। From cafes to street food, budget finds to viral spots. Tune into the big recommends every Sunday. क्योंकि अगर अवनि ने बेस्ट कह दिया तो बस कह दिया।
0: Catch the big recommends every Sunday from 3 to 6 p.m. with Avni. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. No rush, no noise. Just soul-soothing music on a moonlit ride. This is the big chill on Big 106.2. The beat of Bollywood.

सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: प्रीत

आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

You are listening to The Night Shift on Big 106.2.

आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

जिंदगी के सफर में बहुत दूर तक, जिंदगी के सफर में बहुत दूर तक जब कोई

आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।